0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: प्यार की रोमांटिक लेकिन झूठी कहानियां कभी बनाई है अपनी जिंदगी में? झूठी कहानियां प्यार की. सो मैं एक्स एंड आई, वी मेट ऑन अ डेटिंग ऐप. मतलब इट वाज एज सिंपल एज दैट. लेकिन लोगों के लिए ही टोल्ड मी कि हम उन्हें ये कहेंगे कि तेरे पास एक किताब थी और तू एक कैफे में थी और मैं भी उसी कैफे में आया एंड आई वॉज ऑल्सो रीडिंग द सेम बुक एंड दैट्स हाउ वी गॉट टॉकिंग. ओ माई गॉड, किसने सोचा था कि आप भी उम्बर्टो इको पढ़ते होंगे. एंड आई वॉज लाइक, हम ये सब ड्रामा कर किस लिए रहे? ही वॉज लाइक, एक्साइटमेंट मेरी जान, हम एक आइकॉनिक पल बन के अपने आप को प्रेजेंट करेंगे टू दिस वर्ल्ड एट लार्ज. आई वाज लाइक, डज द वर्ल्ड इवन केयर अबाउट इट? बट इट टर्न्स आउट दैट जिसको भी हमने ये प्यार की झूठी स्टोरी सुनाई थी, दे एंडेड अप लविंग एवरी बिट ऑफ इट. क्या आपने कभी अपनी लव लाइफ को, वो जितनी एक्साइटिंग थी उससे बढ़ चढ़ कर लोगों को बताया है ऑन सोशल मीडिया और अदरवाइज? व्हाटएवर योर आंसर टू दैट वन इज, आई वांट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
5: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मौसम तो रस्त, हवाओं में एहसास नहीं पर क्या यही है शब्द शिकस्त।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची का।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: देखिए हम ऑलरेडी बहुत ही नर्वस हैं, हम अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं और हम एक बहुत ही फैंसी कॉफी शॉप पर जा रहे हैं, लेकिन एक से दूसरी कॉफी का डिफरेंस नहीं पता है। जरा मदद करके बता दीजिए प्लीज।
2: रोशी के डीएम से।
1: This has to be the sweetest DM anyone has ever sent me. Mohit, I am totally going to help you figure out your coffee game. अगर आप पहली बार एक बहुत ही fancy coffee shop पर अपनी babe को लेकर जा रहे हो and you don't want to come across as really ignorant of coffees, let me just tell you मोटा मोटा, cappuccino वो coffee होती है जिसमें स्टीम मिल्क होता है और थोड़ा सा ब्लैक कॉफी होता है, ठीक है? तो ज्यादा इसमें दूध होगा और एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो होगा। एस्प्रेसो है एक शॉट काली कॉफी। लाते जो है उसमें एस्प्रेसो है, लेकिन उसमें जो दूध की मात्रा है वो ज्यादा है। यूजुअली आइस लाते टेस्ट्स अ लॉट लाइक कोल्ड कॉफी, ठीक है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही। अगर आप मोका ऑर्डर कर रहे हैं तो मोका का मतलब है कि इसमें एक चॉकलेट फ्लेवर भी होगा। तो कॉफी है, दूध है और चॉकलेट का फ्लेवर है। अमेरिकानो ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब है एस्प्रेसो का एक डार्क कॉफी का शॉट है और उसके ऊपर बहुत सारा गर्मा गर्म पानी है। और अगर आप आयरिश कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें विस्की भी होगी। सो इफ यू आर समवन हू इज अ टीटोटलर, आप आयरिश कॉफी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। अगर आप फ्लैट वाइट ऑर्डर कर रहे हैं तो ये है, इसमें कॉफी है और कैपेचिनो के वनस्पत इसमें कॉफी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें स्टीम मिल्क भी होता है और इसमें थोड़ा सा फोम भी होता है। तो आपके लिए बस इतना कॉफी का जानना इनफ है। आपकी स्माइल इतनी चार्मिंग लग रही थी मोहित, मैंने आपके डीपी में देखा है दैट वो लड़की कॉफी पे कम और आपकी स्माइल पर ज्यादा ध्यान देगी एंड आई विल नॉट ब्लेम हर फॉर इट। और अगर मोहित की तरह आपकी भी जिंदगी में यू आर गोइंग आउट ऑन अ डेट एंड यू आर सुपर नर्वस अबाउट इट, जस्ट हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। आई बी सो हैप्पी टू हेल्प यू फिगर योर वे अराउंड योर डेटिंग सीन। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, हिट मी अप, डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आज का वर्ड ऑफ द डे है बनस्पत, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है एज अपोज टू। अब इसे एक एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अमेजिंग सज्जन किस्म का इंसान है, बनस्पत आपके बॉयफ्रेंड के, जो आपको सिर्फ एक बैंक और काम वाली बाई समझता है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी इस सेंटेंस का ये है, इट इज टाइम दैट यू डम्प्ड योर बॉयफ्रेंड हनी, इफ ही इज ट्रीटिंग यू लाइक अ बैंक देन मे बी इट्स टाइम यू डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। ऑन दैट नोट, अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही इसके विपरीत है एंड यू एक्चुअली मेट समवन हु इज रियली इनक्रेडिबल, आपने कभी सोचा भी नहीं था आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी डिटर्जेंट पाउडर की तरह, हिट मी अप एंड टेल मी योर लाइफ स्टोरी। मॉर्निंग ग्लोरी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: गौर से देखो कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीज रिपीट हो रही है एज अ पैटर्न, क्योंकि अगर वो रिपीट हो रही है इट मींस यू हैवंट लर्न्ड द लेसन येट, विच इज काइंड ऑफ द रीजन व्हाई आई एंड अप इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. मैं अभी तक सीखी नहीं हूं कि रेड फ्लैग से दूर रहना है, ग्रीन फ्लैग्स को गले लगाना है. अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही रेड फ्लैग वर्सेज ग्रीन फ्लैग सिचुएशन है, हिट मी अप एंड वील गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी धैर्य है. हाय धैर्य.
2: नंबर मिला था बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका कॉल आएगा.
1: जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. क्या कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में आजकल धैर्य?
2: मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता. आई एम एक्चुअली स्टूडेंट.
1: ये तो अच्छी चीज है.
2: पर कुछ इतना हो नहीं रहा रोशी.
1: क्या नहीं हो रहा?
2: शी इज माई फ्रेंड, आई लाइक हर, शी ऑल्सो लाइक्स मी, बट उसके घर में इशू है.
1: तो स्कूल में या कॉलेज में?
2: हम उस कॉलेज में हैं.
1: तो तुम छुप छुप के भी तो मिल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है?
2: हम छुप छुप के मिलते हैं बट उसको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम ज्यादा क्लोज हो गए तो जब बिछड़ेंगे तो ज्यादा दुख होगा ना.
1: पॉइंट तो है, तेरी गर्लफ्रेंड काफी लाइक इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल है.
2: मैम इतना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए ना. प्यार कौन सा इंटेलिजेंस से होता है, वो दिल से होता है ना.
1: तो कोई बात बताओ वैसे धैर्य, ऑनेस्टली अगर तुम्हारा दिमाग इतना अच्छे से चल रहा है ना, दैट मींस तुम्हारा प्यार लाइक ईक्यू है, इमोशनल क्वोशेंट, वो थोड़ा कम है, और जो तुम्हारा आईक्यू है ना, दिमाग का क्वोशेंट, वो थोड़ा ज्यादा है. तेरी गर्लफ्रेंड प्रैक्टिकली तो सही बोल रही है कि मतलब जितने क्लोज हो गए बाद में उतना ही दुख होगा. बट देखो कोई फर्क पड़ता है उससे? मुझे तो ना पड़े. अगर मैं हूँ और आई नो कि यार ठीक है मेरा रिलेशनशिप शादी में नहीं बदलेगा बट मुझे मोहब्बत है असली, तो जब तक चल रही है मैं तो चलाऊंगी यार. उसके बाद मैं देवदास बन गई तो बन गई.
2: बिल्कुल रोशी, मैं उसे यही बोल रहा हूँ कि आज तो जी.
1: हाँ एग्जैक्टली,
2: जो समय होगा देखा जाएगा.
1: और कल क्या पता यार, पेरेंट्स मान जाए, जो भी तुम्हारे इश्यूज हैं रिजोल्व हो जाए, या हो सकता है कि दो साल बाद तुम ही एक दूसरे में इंटरेस्ट ना हो. धैर्य आई फील कि तुम्हें आज प्यार हो रहा है ना, कोई गारंटी नहीं है कि एक साल बाद तुम्हें एक दूसरे से उतना ही प्यार हो जितना आज है. उसके बारे में सोच करना, बिकॉज उसने जो किया है तेरे साथ, वो जो अब कह रही है, वो मैं भी एक बंदे के साथ कर चुकी हूँ और जिंदगी भर बैठ के रिग्रेट किया मैंने. अब क्योंकि तुम कॉलेज से निकल के ऑफिस में चले जाओगे, उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे. यू बोथ नीड सपोर्टिव पार्टनर्स. अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 6-7 months लेट्स बी टुगेदर, और उस 6-7 months के बाद देखेंगे क्या करना है. थोड़ा टाइम बाय कर ले उससे अभी के लिए. जस्ट गो विद द फ्लो राइट नाउ.
2: मैं उसको गाना सुना दूं?
1: कौन से वाला?
2: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो.
1: यू आर सच अ रॉक स्टार. आई डोंट नो अबाउट दिस गर्ल, बट अगर मैंने तुझसे 5 मिनट और बात की ना धैर्य, तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा.
2: थैंक यू सो मच, यू डिड मीन द लॉट. मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है,
1: इसलिए मुझे लग रहा है कि तू इस बंदी को तो कन्विंस कर ही लेगा. एंड फॉर द फ्यूचर विद द गर्ल आई हैव दिस फॉर यू.
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: I love you so
2: much. Same here. I love you too, Roshi.
1: All the best to you, sweetheart.
2: Bye.
1: Okay, bye. अगर आपकी भी जिंदगी में धैर्य की तरह, आपके पास तो धैर्य है लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड के पास धैर्य नहीं है, why don't you hit me up and we will talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: It's 9:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
1: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने एक्स को राइट आफ्टर योर ब्रेकअप ब्लॉक करना इज नॉट अ बैड थिंग. हाँ, आजकल के लाइक इंटेंसली एक्टिव सोशल मीडिया के एनवायरनमेंट में वन वुड थिंक कि यार मैं इस इंसान को ब्लॉक क्यों करूँ, इतना लाइक पेटी लगता है. बट इट्स नॉट पेटी, इट इज सुपर हेल्दी. तो मेरा जो एक्स था, जो अभी रिसेंटली एक्स हुआ था, उसने ना डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे सारे टाइम इंस्टा पर डीएम करता रहेगा बहुत सारी लव पोएम्स, कुछ जो उसने खुद लिखी हैं, कुछ जो उसने कॉपी की थी कहीं से. बट द पॉइंट वाज, जब तक वो मेरे इंस्टा पर था, ही केप्ट सेंडिंग मी थिंग्स. और एक टाइम के बाद, मतलब मेरा दिल वाज टर्निंग इनटू अ पडल एंड आई हैड टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि ये बंदा अल्कोहलिक है, ही नीड्स हेल्प, आई कांट गो बैक टू हिम. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई मैं इसको ब्लॉक कर रही हूँ, बिकॉज इसे ब्लॉक करना मेरे लिए बहुत हेल्दी डिसीजन है. एंड ऑनेस्टली आई एम ग्लैड आई ब्लॉक्ड हिम, बिकॉज अगर मैं उसे नहीं ब्लॉक करती तो मैं और नए और इंटरेस्टिंग लोगों को कैसे मिलती. सो ऑन दैट नोट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अपने न्यूली एक्स्ड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ब्लॉक करना इज नॉट पेटी, इट इज हेल्दी. लेकिन अगर आप तब भी उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हो, नोइंग फुली वेल दैट इट्स गुड फॉर यू, व्हाई डोंट यू हिट मी अप और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, सो डू व्हाट यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इस तरह के फिनोमेना सिर्फ मेरी बेस्टी के साथ हो सकते हैं या फिर अब्रॉड लोगों के साथ हो सकते हैं. लेट्स जस्ट गो विद दैट वन, बिकॉज मेरी बेस्टी के अलावा और मैंने किसी से ये नहीं सुना है. सो शी केम बैक यस्टरडे, उसने मुझे फोन किया एंड शी सेड, रोशी आई जस्ट हैड अ जिमनाजम. एंड आई वाज लाइक, भाई मैंने तरह तरह की चीज़ें सुनी है, ये जिमनाजम क्या होता है. शी सेड, अगर आप बहुत इंटेंस कोर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी यू एंड अप बीइंग प्लेजर्ड. I was like, seriously? She said, हाँ. और ऐसा नहीं है कि हम जिम में कुछ लाइक यू नो अनफॉरबिडन चीजें कर रहे होते हैं, सिर्फ कोर एक्सरसाइजेस करते करते कई बार इफ यू आर लकी इनफ देन आप चर्म सुख की सीमा प्राप्त कर सकते हैं विदाउट इवन ट्राइंग और थिंकिंग अबाउट इट. एंड आई वॉज लाइक, माई गॉड, दैट इज सम सीरियस इन्फॉर्मेशन. और इस चीज का नाम भी है, मतलब सरप्राइज सरप्राइज, इट्स कॉल्ड अ जिमनाजम. तो अगर आपको कभी जिमनाजम हुआ है, आई रियली वॉन्ट टू नो योर मॉर्निंग स्टोरी. एटलीस्ट मुझे ये लगेगा कि मेरी बेस्टी एक लौता पागल इंसान नहीं है इस दुनिया में. एंड टू टेल मी योर स्टोरी, मॉर्निंग ग्लोरी, हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू आर सो गुड.
2: हियर ही वी गो अगेन, ऑथेंटिक ओरिजिनल एंड बेटर देन आवर राइट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा पीस ऑफ एडवाइस मैंने रिसेंटली सुना, विच शायद अगर मैंने पहले सुना होता या शायद मैं पहले इंटेलिजेंट इनफ होती, आई वुड हैव अंडरस्टूड बेटर, कि एनी मैन हु अवॉइड्स हिज ओन फीलिंग्स विल इग्नोर योर फीलिंग्स. अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो अपने खुद की फीलिंग्स के साथ नहीं बैठ सकता, जो खुद की फीलिंग्स से डरता है, वो आपकी फीलिंग्स कभी नहीं समझेगा. दैट्स इट, दैट्स वेयर द माइक ड्रॉप्स. आप जिंदगी में कितनी भी कोशिश कर लो इसे बदलने की, द ट्रूथ इज एनी वन नॉट कम्फर्टेबल विद देयर ओन इमोशंस विल नॉट बी कम्फर्टेबल विद योर्स. अब आप ये बताओ कि मेरी तरह कितनी बार इमोशनली अनअवेलेबल इंसानों के साथ दिल लगाया है, और जब लगाया है, How hard has it been for you? And to tell me about that, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FP पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. And while you do that, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है. And I love you loads.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। दिस

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpai ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. Lekin ye bhi utna hi sach hai ki agar ye gana kisi choti film ka hissa na hota, to shayad aaj aur zyada log iske bare mein baat kar rahe hote. और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है. आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं. जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं. ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है. और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते. कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था.

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोस बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: के साथ only on मिर्ची it's hot number
4: 17। तू पास है मेरे पास है,
0: इनके साथ only on मिर्ची it's hot number
4: 17। तू पास

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: या फिर एक और टूटे दिल की आवाज।
1: सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना,
0: या फिर ये वाला एंथम।

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है ए आर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song in Ravan, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें हैं आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वार्मथ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

मशरू का इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: क्या आपको भी एक टाइम पे परवीन बाबी और जीनत अमान में बड़ा कंफ्यूजन होता था, दोनों एक जैसी लगती थी?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: आपको भी ऐसा लगता था तो गिव मी अ हाई फाइव।
1: छोटी होती ऐसी कंफ्यूजन बहुत होती थी ना, जैसे मुझे एक बड़ी कंफ्यूजन होती थी नेल्सन मंडेला और मंडल कमीशन में।
2: वेल लेट्स नॉट गो देयर, पॉलिटिकल मामला है, सेंसिटिव मामला है, हम फिल्मों पे वापस आते हैं।
1: दो गानों में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, एक तो ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे और एक ओ मेरी सोनी। बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद क्लैरिटी मिली कि ओ मेरे सोना रे तीसरी मंजिल का गाना है, शब्बी कपूर साहब आशा पारेख पे पिक्चराइज्ड, एंड ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना यादों की बारात का गाना है, पिक्चराइज्ड ऑन विजय अरोड़ा एंड परवीन बाबी एंड जीनत अमान। गाना सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ,
2: आप सुन रहे हैं।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. La vid bala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
3: Nahi, kaun baat kar raha hai?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है, कौन?
4: ओ, मेरी बात
3: कौन
4: सुन।
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था, तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
3: रॉन्ग ले रहा हूँ
4: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे से बात। राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, चल ठीक है, निकल तू यार।

0: हेलो
1: हेलो
0: कौन
1: हेलो विपिन,
0: कौन बोल रहा है?
1: इस्था, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
0: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था
1: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
0: भाई, तो इतने धीरे के बोल रहा
1: अरे
0: है।
1: भाई मानो, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
0: पहले किया था।
1: अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
0: ऑनलाइन ऑनलाइन की
1: अरे
0: थी।
1: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
0: जाना जरूरी है।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: दुबई।
1: अच्छा तो दुबई जाना है
0: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
1: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
1: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
0: आपने एकदम सही कह रहे।
1: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
0: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
1: भाई साहब एक बात बताऊं?
0: बताओ।
1: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
0: तो पागल है क्या?
1: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
0: करवा देना भी है आपसे।
1: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
0: सॉरी सॉरी सॉरी।
1: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
0: ओके ओके,
1: आई लव यू,
0: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: ये पकड़ा।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: भाई अनुराधा पौडवाल वैसे तो 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनके करियर की शुरुआत 70s में हुई थी एंड शी रोज टू फेम इन 80s। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उन दिनों किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी, किस तरह से गाने बनते थे, क्या खूबसूरती होती थी, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन दिनों में ये होता था कि इफ देर वॉज अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो तो एवरीबडी हैड टू, मतलब दोबारा से पूरा गाना पड़ जाता था, बजाना पड़ जाता था। यू हैड टू बी मोर प्रिपेयर्ड कि ये नहीं होता था कि चलो एक वर्ड गलत गा दिया तो उतना एक वर्ड आज के जैसे। एंड देन ऑफकोर्स एवरीबडी न्यू कि क्या गाना चल रहा है, तो म्यूजिशियंस मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोगों की कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में 2-3 घंटे लग जाते थे, कभी दिन भर लग जाता था। और मुझे याद है कि स्पेशली सुभाष घाई जी के लिए तो 2-2 दिन तक रिकॉर्डिंग चलती थी, तो उस वक्त की वो ब्यूटी एक अलग ही थी।
0: ब्यूटीफुल। लेकिन अभी हम जो गाना सुनने वाले हैं वो ऐसा ब्यूटी टाइप का नहीं है, वो थोड़ा बीस टाइप का है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on.

आपको पता है देवानंद साहब अपनी डिस्कवरी जीना तमान को किस नाम से बुलाते थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो उनको बुलाते थे जीनी बेबी कह के। जी, एंड अपनी बुक में उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि उनके मन में जीना तमान के लिए एक टाइम पे फीलिंग्स आ गई थी। सो ये वन साइडेड फीलिंग्स थी बिकॉज जीना तमान यूज टू लुक अप टू हिम एज हर मेंटोर ओनली। हाँ, ये लव इश्क प्यार मोहब्बत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन क्रिएट कर देता है कई बार, और आप भी एक बढ़िया सा सीन क्रिएट कीजिए ना जिसमें आपकी मुस्कान जा रही है कान तक। और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

0: एक बहुत ही सुंदर गाना दो सुंदर आवाजों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम का गाना तुम बिन जाऊं कहां, जो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि दो अलग अलग किरदारों पे पिक्चराइज था। एक तो फिल्म के जो हीरो हैं शशि कपूर साहब, उन पे जो पिक्चराइज था वो रफी साहब की आवाज में था, बिकॉज ये एक रोमांटिक सॉफ्ट वर्जन था। इसके वीडियो में शशि कपूर साहब हैं और आशा पारेख जी हैं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन जो दूसरा वर्जन है किशोर कुमार साहब वाला, वो भारत भूषण जी पे पिक्चराइज था। भारत भूषण जी जो शशि कपूर के फादर प्ले करते हैं, और इसका आप वीडियो देखेंगे तो वो गाना गा रहे हैं अपने उनकी फैमिली साथ में, उनकी बीवी और बच्चा साथ में है, छोटा सा बच्चा और उनकी वाइफ। तो बिल्कुल ही अलग फील है, रफी साहब वाला जहाँ रोमांटिक है, ये वाला सोलफुल है। और यहाँ हम कौन सा वर्जन सुनने वाले, वेल जो यूजुअली सुनते हैं उससे डिफरेंट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुम

0: मिड 60s में FTII पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स करने के बाद बॉम्बे में काफी स्ट्रगल करने के बाद जब काम नहीं मिल रहा था तो असरानी साहब FTII में ही एक्टिंग के प्रोफेसर बन गए, साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इसी इंस्टीट्यूट में गेस्ट फैकल्टी थे। असरानी साहब अक्सर उनसे मिलते रहते थे, काम मांगते रहते थे। एक बार ऋषिदा जब गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट आए तो क्या हुआ, सुनिए एक बार असरानी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: उनके दो तीन असिस्टेंट आए साथ में आए थे, मैंने उनको पूछा कि भाई कौन सी फिल्म है, क्या है, बोले कुछ नहीं, लड़के ढूंढ रहे हैं वो गुड्डी के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, और ये बताते कुछ है नहीं, कहानी में कौन है, क्या है क्या है। बोले काफी मैंने पूछा उनसे तो बोले हमारा नाम लेना मत यार तुम, एक छोटा सा रोल है जो एक लड़का गाँव से आता है हीरो बनने के लिए और एक्स्ट्रा बन जाता है जूनियर आर्टिस्ट, मगर हमारा नाम मत लेना। उसमें गुलजार साहब भी थे, सब बता के चले गए। अब वो आए रिश्ते वहाँ से लड़की का जय बहादुर से मिलके वापस कार में बैठने लगे, तो मैंने कहा दादा हाँ बताएगा, हम बताएगा भाई, बट मैंने कहा ये सिलेक्ट हो गए क्या, नहीं नहीं अभी स्क्रीन टेस्ट होगा हम देखेगा। ओके मैंने कहा दादा हमारा भी कुछ तुमको बोला ना, हम करेगा करेगा, मैंने कहा 3 साल हो गया करेगा करेगा बोलता, कब करेगा।
0: वेल इसके आगे क्या हुआ सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं? विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना, थोड़ा ना लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना, थोड़ा ख्याल रखो यार।

0: हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, ऐसे सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
0: हूँ, ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
0: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं, फिर भी क्या मतलब, बिल्कुल काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ, अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर थोड़ा बहुत।
0: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे
0: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Purani Jeans with Charu.

0: ये लेट 70s की बात है जब अस्टानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे और वीकेंड्स पे बॉम्बे जाके फिल्मों में काम भी ढूंढते थे। तब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए FTII पुणे आए और किसी तरह ऋषिदा के असिस्टेंट से बात करके असरानी साहब ने ये पता लगा लिया कि इस फिल्म में एक ऐसा रोल है जो शायद उनके लिए ठीक हो सकता है। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में असरानी साहब ने क्या कहा था।
1: तो मैंने उनको बोला, दादा गाड़ी में बैठते, एक है एक लड़का आता है गांव से हीरो बने। कौन बोला तुमको ये बोला कौन की रे जी होशी की रे बोलो सब जो जितने असिस्टेंट थे उनको तुम किसने बोला कि होशी की कौन बोलता कहानी। बाप रे, मैंने बोला माफ कर दो मुझे मत बोला बोला ना हम चिट्ठी भेजेगा मुझे डांटते आके चले। और उस वक्त क्या था जब चिट्ठी कोई किसी की आती थी बाहर से कहीं से भी नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे वहां से पिकअप कर लो, तो मैं रोज देखता था कोई चिट्ठी आ जाए। फिर एक दिन चिट्ठी आई और उसमें नाम था जया बहादुरी का। इससे पहले कि वो पहुंची बॉम्बे मैं पहुंच गया बॉम्बे और जाके मैंने बोला दादा, बोले तुमको थोड़ी चिट्ठी लिखा है। फिर उनको दया आगे होगी, फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ उनका और ये दो सीन का रोल मुझे दिया उन्होंने गुड्डी में, वहां से शुरू।
0: और यहां से जो शुरू हुआ तो 50 साल का एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंट करियर बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो तुम्हारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी सी।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई, पहली फुर्सत में जाके एक फिल्म देखो।
1: रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मेरा मूवी रिकमेंडेशन है 1973 की फिल्म दो फूल, और इसमें दो फूल कौन है? पुट्टन और छुट्टन, दो भाई लुक्खे लफंगे लेकिन रईस। रईस बाप की बिगड़ी औलाद जो हार्मलेस है लेकिन आवारा है, जिसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और ये किरदार निभाए हैं पुट्टन एंड छुट्टन वाले महमूद साहब और विनोद मेहरा जी ने।
0: जी
1: इसमें अशोक कुमार भी हैं जो इनके फादर बनते हैं, जीवन साहब भी हैं, और महमूद साहब का डबल रोल है इसमें, एक बंदर भी है। तो बेसिकली इन केयरफ्री केयरलेस लड़कों को इनका बाप घर से निकाल देता है, उसके बाद ये क्या शरारत करते हैं और कैसे फिल्म आगे बढ़ती है और क्या गचड़ पचड़ कंफ्यूजन होती है, इज द होल फन। महमूद साहब भाई क्या कॉमेडी उनकी, हैट्स ऑफ वंस अगेन। ए बाय द वे, इसी मूवी से इंस्पायर्ड है 1993 की मूवी आंखें, गोविंदा चंकी पांडे वाली, तो मिस मत करना। फिल्म का नाम दो फूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

वो एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो तो आपको पता है उसके बारे में। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही फिल्म फेस्टिवल जिसमें फिल्मों की बात कम होती है, उसमें लोग क्या अतरंगी कपड़े पहन के आ रहे हैं उसकी ज्यादा बात होती है। अच्छा, सो कांस फिल्म फेस्टिवल में एक सेगमेंट होता है कांस क्लासिक्स, जहाँ पे क्लासिक फिल्में शोकेस की जाती हैं। और पहली इंडियन फिल्म जिसे वहां शोकेस किया गया था और उस फिल्म की टीम को इनवाइट किया गया था, वो फिल्म थी गाइड। सो 2008 में देवानंद साहब बकायदा कांस गए थे, वहां के रेड कार्पेट पे चले थे और ये गाइड फिल्म वहां पे शोकेस हुई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

आजकल चिट्ठियां विट्ठियां कोई लिखता भी है कि नहीं लिखता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम था जब चिट्ठियां लिखना फिर उन चिट्ठियों के जवाब का इंतजार करना हमारा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था, नहीं क्या छोटे होते? और सिर्फ रोमांटिक चिट्ठियां नहीं भाई, हम अपने रिश्तेदारों को भी चिट्ठियां लिखते थे, कजिन्स को भी चिट्ठियां लिखते थे, कोई हमारा दोस्त दूसरे शहर में रहता है उसको भी चिट्ठी लिखते थे, पेन फ्रेंड्स हम बनाते थे उनको भी चिट्ठी लिखते थे। और चिट्ठी लिखने भेजने के बाद उसके जवाब का जो इंतजार होता था, अच्छा फोन पे लैंडलाइन फोन पे भी बात हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो लिखे हुए लफ्ज पढ़ने में उसमें से जो इमोशंस निकलते थे उनको फील करने में जो मजा आता था ना, वो मजा अलग ही था भाई। इसीलिए मैं ऐसे सोच रही थी कोई चिट्ठियां आजकल लिखता भी है कि नहीं लिखता है, मुझे तो बस बैंक की चिट्ठियां आती हैं और कोई चिट्ठी आती नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप मुझे चिट्ठी ना से हेलो हाय लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे @rj.charu rj.charu ये मेरा यूजर नेम है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा।

0: चिल्लाएंगे। तब क्या क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का। अभी आग लगा दो इसमें, इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
0: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
0: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
0: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
0: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
0: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: ठीक है,
0: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
1: आपने कब सही कह रहे?
0: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
1: नहीं बोलना।
0: भाई साहब एक बात बताऊँ?
1: बताओ।
0: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो
1: क्या?
0: वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: तो पागल है क्या?
0: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है आपसे।
0: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी।
0: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा, हैव अ सेफ फ्लाइट।
1: ओके।
0: आई लव यू।
1: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: ये पगला।
5: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Purani Jeans with Charu. Only on

0: अब बहनों और भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत जो गीत माला में पायदान नंबर 29 पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ब्रह्मचारी फिल्म का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, कंपोज्ड बाय शंकर जयकिशन, रिटन बाय हसरत जयपुरी एंड संग बाय मोहम्मद रफी। और क्या सिंगिंग है रफी साहब की इस गाने में भाई,
1: मतलब दो लाइन ऊंचे सुर में फिर दो लाइन एकदम नीचे सुर में। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी ऊंचे सुर में, और फिर फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी नीचे सुर में।
0: ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगिंग रफी साहब, सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेखा हमेशा वक्त से आगे चली हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है 1983-84 में उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर एक ऑडियो कैसेट रिलीज की थी। इस बारे में उसी दौरान एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: मैंने कुछ साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा आई लाइक व्हाट आई डिड, काफी मुझे फर्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, शी इज वेरी गुड एट योगा, तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप। तो वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट, कोई नहीं तो आपके फैंस जरूर खरीदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स एन ऑडियो टेप, इट्स नॉट अ वीडियो टेप। तो मैंने किया, By God's grace, it's a very big hit.
0: Well, इस ऑडियो कैसेट का नाम है रेखा's माइंड एंड बॉडी टेम्पल और इसकी एक कॉपी आपको YouTube पे भी मिल जाएगी, जिसमें इस ऑडियो के साथ रेखा की एक्सरसाइज और योगा फिटनेस के कुछ फोटोज भी हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1973 की फिल्म राजा रानी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये पॉपुलर गाना इज इंस्पायर्ड बाय और सैम्पल्ड फ्रॉम एक अंग्रेजी गाना जो 1969 में रिलीज हुआ था। बैंड का नाम द फिफ्थ डायमेंशन, गाने का नाम एज ऑफ एक्वेरियस। सुनिए जरा थोड़ा सा। समझ में आया आपको कौन सा गाना है ये? रिटन बाय आनंद बख्शी, संग बाय आशा भोसले एंड भूपेंद्र, कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली goes down the ground.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृताय मानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना ममदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना ममदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी के लोएस्ट फेज में खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इस वर्ल्ड कप में जो हमने जीता, फिलहाल बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरा सवाल आपसे जो है कि अगर ऐसे प्लेयर्स हों, क्योंकि ये लाइफ में भी सिचुएशन आता है कि आप में टैलेंट बहुत है लेकिन आपका समय शायद अच्छा नहीं चल रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज में हो, कौन सी एक ऐसी एडवाइस है जो आप उनको देना चाहेंगे कि भाई जस्ट पुट योर हेड डाउन और इस पे कॉन्सेंट्रेट करो और सब कुछ सही होगा?
4: सो दे कैन नॉट बी एनी वन टिप बिकॉज वी आर ऑल वेरी डिफरेंट। व्हाट मे वर्क फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर मी, बट व्हाट दे सेड, आपको लगा होगा कि वो बहुत ऐसा सिंपल सा था पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो उन्होंने कहा फैमिली सपोर्ट एंड टीम सपोर्ट। सारी दुनिया क्या कह रही होती है ना, वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर आपके आसपास वाले आपके ऊपर फेथ रखते हैं तो वो आपकी इनर कॉन्वर्सेशन बन जाती है। इनर कॉन्वर्सेशन ना, सारे कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, पर कोई एक है जो कहते हैं मुझे पता है आप कर सकते हैं, आई नो दैट यू कैन डू इट। तो आपका, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है, आपका मन कहना शुरू कर देता है कि मैं ये कर सकूंगा। इट इज दोज पीपल व्हाट दे आर सेइंग टू यू। जैसे अगर उसमें से कोई कहता है ये वक्त भी बीत जाएगा, नाउ इट कुड बी वन लाइन एंड इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन सबके लिए काम करती है। जस्ट द पेनी ड्रॉप्स आपके लिए वो अहम मोमेंट हो जाता है। किसी के लिए होगा कि ये वक्त भी बीत जाएगा, किसी के लिए होगा सोच लिया तो कर लेंगे, एक बार मन ने अगर ठान लिया तो वो चीज हो सकती है। किसी ने कहा, किसी के लिए हो सकता है नो बट माई कोच हैज कम्प्लीट फेथ इन मी, आई एम एबल टू शट ऑल दैट नॉइज आउटसाइड। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस समय होती है कि आपके आसपास का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी होता है। तो वो उन्होंने बहुत सहज भाव में कह दिया, लेकिन व्हेन अ प्लेयर विंस इट इज नॉट जस्ट वन प्लेयर, उसके पीछे कितना कितना फैमिली का और टीम का एक इमोशनल सपोर्ट होता है। एंड दिस इज अ कॉमन थिंग, यू नो, जब कोई प्लेयर सक्सेसफुल होता है दे विल टेक वन नेम कि उसने कॉन्वर्सेशन मेरे साथ की थी, मेरे पर फेथ रखा था, फलाने ने मेरे पर फेथ रखा था। हैविंग दैट वन पर्सन जो आपके ऊपर फेथ लूज नहीं करता, दैट गिव्स यू ट्रेमेंडस पावर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपतये नमः।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: ब्रजेश वडोदरा से लिखते हैं, यदि ब्रह्मचार्य हो तो संतान का जन्म कैसे होगा? ये प्रश्न मेरे 13 साल के बच्चे का है जो अभी साइंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहा है।
4: सेलिबेसी एक डिसिप्लिन होता है और वो डिसिप्लिन सब फॉलो करें ये कंपलसरी है ऐसा नहीं है
3: जी।
4: लेकिन बहुत लोग ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी का डिसिप्लिन क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वो उनको सोल कॉन्शियस होने में मदद करता है। आप उस एक्ट के बियॉन्ड जाते हैं सो दैट यू कैन बिकम, जैसे आप देखो दो वायर को अगर जोड़ना है तो आपको दोनों के आगे का रबड़ उतारना पड़ता है तो उसमें से करंट फ्लो होता है। तो जब हम सुप्रीम बीइंग की बात करते हैं तो वो एक एनर्जी है जिसके ऊपर कोई भी और लेयर नहीं है
3: जी।
4: लेकिन हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो बॉडी का अट्रैक्शन होता है, बॉडी से अटैचमेंट होती है, बॉडी के प्रति ही सब कुछ हमारे मन में चलता है। सेलिबेसी जब कोई लोग प्रैक्टिस करते हैं इट इज जस्ट अपलिफ्टिंग देमसेल्व्स, यू नो, वो प्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उस एवर प्योर से हमारा कनेक्शन इजी हो जाए। इट इज बाय चॉइस, वो डिसाइड करते हैं कि हम थोड़े समय के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से वो उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये कुछ कंपल्शन नहीं है, अगर थोड़े समय के लिए कोई इसको प्रैक्टिस करता है और उसको कोई डिवाइन एक्सपीरियंस होता है तो वो उसकी चॉइस है।
3: और सारी दुनिया नहीं कर रही तो पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही, तो घबराओ मत।
4: संतान उत्पत्ति के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम कई बार नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, आज से 50 साल पहले आपको कोई पूछता कि अगर रिप्रोड्यूस करना है, संतान उत्पत्ति करनी है, तो आप एक ही तरीका बताते। आप कहते कि उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज हम कहेंगे नहीं नहीं, साइंस ने बहुत टेक्निक्स निकालती हैं, आप IVF भी कर सकते हैं, आप सरोगेसी भी कर सकते हैं, कितने टेस्ट ट्यूब बेबी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 साल पहले हमसे ये कोई बातें करता तो हम कभी भी उस चीज पर विश्वास नहीं करते। हम कहते क्या बात कर रहे हैं, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। सो पावर ऑफ साइंस में हमने देखा कि ये चीज पॉसिबल है। पावर ऑफ साइलेंस, योग बल से भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है।
3: अच्छा,
4: होती है। सन्यासी भी इन चीजों की बात करते हैं। सत्यों की दुनिया में हम कहते हैं सब संपूर्ण निर्विकारी है, लेकिन वहाँ भी बच्चों का जन्म होता है। पर जैसे यहाँ साइंस के बल से हुआ, वहाँ योग के बल से होगा, संकल्प के बल से सृष्टि चलती है। बट जस्ट लाइक व्हेन यू आर नॉट इन दैट फ्रेम ना, आप वो समझ नहीं पाते। साइंस प्रूफ की चीज है, स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस की चीज है। साइंस जिस दिन जिस चीज को प्रूफ कर देती है आप कहते हैं ये हो सकता है। नहीं तो जब भी किसी ने कोई भी नई चीज की बात करी, ऐसा कोई मोबाइल होगा, फोन होगा, हम इतनी दूर बात कर पाएंगे, तो लोगों ने उनको क्या समझा?
3: बेवकूफ,
4: ये पागल है। किसी ने कहा ऐसा कोई प्लेन उड़ सकेगा, हम उसमें कहीं जा सकेंगे। सो टिल यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग एंड प्रूव इट, लोग आपको समझते हैं कि शायद ये जो बातें कर रहे हैं ये तो बेकार है, बेकार की बातें। पर आपने प्रूव कर दिया, कहते हाँ इसमें कुछ बात है। साइंस की अथॉरिटी प्रूव करने की है, स्पिरिचुअलिटी की अथॉरिटी एक्सपीरियंस है। इसलिए जो एक्सपीरियंस कर लेता है फिर उसको पता है कि वो परमात्मा सत्य है और वो जो बातें कह रहे हैं वो भी ट्रूथ है। तो हर चीज का प्रूफ स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। आप आत्मा को नहीं देख सकते, आप परमात्मा को नहीं देख सकते, पर आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस से बड़ी भी कोई अथॉरिटी नहीं होती।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: कहने और करने में फर्क होता है. अपने वर्ड्स को एक्शन में कैसे बदला जाए, आइए इस बात को समझते हैं.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
4: सिस्टर आउटस्टैंडिंग एक्टर एक जमाने में रहे हैं, अब हमारे बीच नहीं है. इरफान खान, उन्होंने एक बार मृत्यु के जस्ट थोड़े दिन पहले ही बोला था कि एक कहावत है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड. बोलना बड़ा आसान है लेकिन हमेशा होता नहीं है. और मेरा सवाल आपसे ये है कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा कि संजू सैमसन जैसे लोगों ने तो उनको लेमन्स मिले, अपॉर्चुनिटी का उन्होंने लिया, उन्होंने लेमनेड बना दिया क्योंकि उसके पहले बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे. लेकिन बहुत लोगों को लेमन्स मिले और उनको पता नहीं था क्या करना है. तो ये इंसान पर डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करता है, लेमन्स पर डिपेंड करता है?
5: सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, व्यक्ति पर डिपेंड करता है.
4: What you make of that?
5: What you make out of that situation पर डिपेंड नहीं करता. सिचुएशन बताकर थोड़ी ना आते.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया

0: Nara.
1: भीरु या शाम कनाई, ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: मनोज हैं, वो लिखते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है, सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, 45 मिनट योग करता हूँ, पर्सनल प्लस कंपनी प्लस फैमिली के काम करते करते दिन खत्म हो जाता है, फिर भी बहुत काम पेंडिंग रह जाता है, उसके कारण प्रेशर बहुत रहता है, क्या करूँ, बैलेंस कैसे करूँ लाइफ को?
3: प्रायोरिटाइज करें और क्या कर सकते हैं, बहुत काम है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है, कई लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं।
2: जी।
3: क्या जरूरी है जो करना ही है, और क्या है जिसको छोड़ सकते हैं, क्या है जिसको कल कर सकते हैं, क्या है जो किसी और को सौंप सकते हैं,
2: डेलीगेट कर सकते हैं। सही बात है।
3: अगर थोड़ा सा लिस्ट बनाएंगे, पहले आप सारे काम लिख लीजिए, उसमें देखिए सबसे हाई प्रायोरिटी कौन सी है, उसको टिक कर लीजिए, कौन सा है किसी को सौंपे। मैंने कई बार देखा है कई लोग सारा बोझ कुछ खुद ही उठा करके घूम रहे होते।
2: सही बात है।
3: ट्रस्ट करना शुरू करें, कई बार कई लोग हमसे भी अच्छा कर लेते हैं। फेथ करें, डेलीगेट करें, औरों को डेलीगेट करें। देखो, ज्यादा काम आप तभी कर सकते हैं जब हम औरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, रिश्ता बनाते हैं और उन पर फेथ रख करके वो काम सौंपते हैं। अकेले तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चला सकता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। तो प्रायोरिटाइज करें, ये चार बातें, क्या पहले आपको करना है, क्या है जो छोड़ सकते हैं, क्या है जो कल कर सकते हैं, और क्या है जो दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं।
2: नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब जिंदगी आप पर प्रॉब्लम्स की गुगली फेंके तो उन्हें समझदारी से कैसे हैंडल करें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जिस भी समय सिचुएशन आई है, व्हेन यू आर सेइंग लेमन्स, व्हेन यू आर सेइंग टैंजरीन, मींस कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है, आप नहीं चाह रहे थे। हर कोई मैंगोज एप्पल चाहता है और हर समय चाहता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी होगा जो कहेगा अच्छा नाउ आई एम रेडी। अगर एक आध सेटबैक भगवान देना है या हार्डशिप देनी है तो दे दो, आई एम रेडी। ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी लाइक्स कि लाइफ स्मूथ हो, लेकिन पता है कि लाइफ इज अ जर्नी और वो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये हमें पता है। दैट इज द वे लाइफ इज। सड़क होती है, उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर होता है। कब वो स्पीड ब्रेकर आएगा आपको नहीं पता है, कब वो चैलेंज आएगा आपको नहीं पता है। Now what you make out of it, उतनी चॉइस और उतनी पावर आपके पास है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमार। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्री।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
3: Oh, no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं, इसके लिए मैं क्या योग्य उपाय करूं? उनका व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा और घर में बहुत झगड़े होते हैं। कृपया बताइए कि स्थिति को कैसे संभालें और घर का माहौल कैसे बेहतर बनाएं।
3: जब कोई शराब पीता है, मन वो आत्मा बहुत कमजोर है। अगर उसको लत लग गई है, एक होता ना बाय चॉइस, कहीं कहते हैं कि एक तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ड्रिंक हैवी ड्रिंकर नहीं हूँ, आई एम एबल टू कंट्रोल इट। पर कोई भी चीज हैवी ड्रिंकर को एक दिन में थोड़ी ना बनता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। कोई चेन स्मोकर आज थोड़ी ना बनता, हर कोई ऐसे ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से जो उसकी प्राप्ति है वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस दिन आपको अच्छा लगा, थोड़ी हैप्पी फीलिंग थी, थोड़ी सी रिलैक्स्ड फीलिंग थी। अब वो जो फीलिंग है वो मेमोरी में स्टोर हो गई। अब जिस दिन आप कंफर्टेबल नहीं फील हो रहे, वो मेमोरी आपको पुल करती है। तो आप कहते हैं अच्छा आज थोड़ा सा लेते हैं, करते करते उसकी डोजेस बढ़ती जाती हैं, तब हम उसको एक दिन कहते हैं कि अब ये एडिक्शन है, डिपेंडेंसी है, इसके बिना वो रह नहीं सकता। पर कोई भी एडिक्शन के पीछे कोई वॉइड होता है, कोई खालीपन है। बिना खालीपन के आप उस चीज का सहारा नहीं लेंगे। अगर आप किसी भी सहारा ले रहे हैं किसी चीज का अच्छा फील करने के लिए, क्योंकि जो एडिक्टेड होते हैं आप छुड़ा नहीं सकते उनको। आप कितना भी कह लेंगे आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या परिवार के लिए अच्छा नहीं है, पर उनको तो उतना ही समय अच्छा लगता है। उनको तो उतना ही समय दुख दर्द भूलता है, उनको तो उतना ही समय अपनी प्रॉब्लम से किनारा होता है, तो वो तो उनके लिए अमृत है ना। तो वो कैसे छोड़ेंगे? जब तक वॉइड नहीं भरेगा, खालीपन नहीं भरेगा, तब तक वो एडिक्शन छूटेगा नहीं। तो एज अ अगर वो वाइफ है तो आप अपने घर का एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें कि जिस एनवायरनमेंट में आकर के उनको अच्छा लगे। अगर घर के एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, कलह कलेश है, दुख है, और समझो वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, व्यापार भी उनका ठीक नहीं चल रहा, तो व्यापार में भी दर्द और घर में भी दर्द, तो सुख तो फिर शराब के अंदर ही है ना। तो कम से कम घर में अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, उनके ऊपर विश्वास किया जाता है, उनको कहा जाता है सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, तो एक दिन में तो नहीं छूटेगा, क्योंकि कोई भी संस्कार एक दिन में नहीं छूटता है। लेकिन आपकी पॉजिटिव सोच, आपका पॉजिटिव व्यवहार, आपका सपोर्ट, आपका सहारा उनको एक एक परसेंट ताकत देगा खुद को ठीक करने की। वो पहले खुद ठीक होंगे फिर व्यापार ठीक होगा। तो हमें तो अपना रोल प्ले करना है। हम भी अगर उस दर्द में चले जाएंगे तो टोटल वॉइड हो जाएगा, टोटल नेगेटिविटी हो जाएंगे। इसलिए जो कर सकते हैं वो करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी कभी परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करती, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आइए इस पर गौर करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इसमें एक चीज और आती है, जब ईशान किशन के फाइनल मैच के पहले उनकी कजन सिस्टर और ब्रदर इन लॉ नहीं रहे ना कार एक्सीडेंट, मतलब जिंदगी आपको मौका नहीं देखती है कि आपके परफॉर्मेंस के लिए आइडियल कंडीशंस होंगे। ज्यादातर आइडियल कंडीशंस नहीं होते हैं, तो ये कमाल उन्होंने किया, क्योंकि जिंदगी हर बार फेयर नहीं होती है, इससे जूझना बहुत जरूरी है।
4: सी, अभी हमें कईयों की स्टोरीज पता चल जाती है, पर ये जीवन की यात्रा में तो हर एक के साथ ही होता होगा। आइडियल सिचुएशन तो सारी लाइफ बनी रहे ऐसा तो नहीं है, मे बी सम स्टोरीज वी आर हियरिंग टुडे एंड वी आर एबल टू सिंपथाइज विद देम, पर कितने लोग होंगे जो अपनी किसी न किसी चीज से अंदर ही अंदर जूझ रहे होते हैं।
3: लेकिन कई बार सिस्टर क्या होता है, हम सब वेट कर रहे होते हैं कि जब एंड द टाइमिंग इज राइट, ये कई बार सुनने को मिलता है कॉर्पोरेट जागन में, तो होता ही है काम, यार इसका सही समय नहीं आया, ये अभी करेंगे। लेकिन ज्यादातर जिंदगी में क्या होता है, आप तैयार नहीं होते और अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपको उसी समय लेना पड़ता है।
4: अपॉर्चुनिटी कब आएंगे आपको नहीं पता, पर प्रिपेयर्ड रहना आपके हाथ में। सी, जिसको हम लक कहते हैं वो क्या है, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अब वो अपॉर्चुनिटी उस दिन पर आने वाली है जब आपके घर में कोई ट्रेजेडी है, नहीं कह सकते,
3: नहीं कह सकते।
4: वो अपॉर्चुनिटी किस दिन आएंगे पता नहीं है, लेकिन वो उस दिन पर आप रेडी थे, आइडल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, पर आप इंटरनली उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, फिजिकली प्रिपेयर्ड थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे, तभी तो आप उस चीज को सफलता में कन्वर्ट कर पाए ना, वो ज्यादा जरूरी है। वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आइडल सर्कमस्टेंसेस में आएंगे, वो तो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.

0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: समीर पटेल गांधीनगर से लिखते हैं सिस्टर कि मेरे पास सही गलत की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो मैं फॉलो नहीं कर पाता। जैसे मुझे पता है कि जंक फूड सही नहीं है और उससे नुकसान भी होता है, फिर भी जब कोई अच्छी डिश देखता हूँ तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ?
3: तो उनकी बुद्धि शक्तिशाली है पर मन कमजोर है ना।
2: हाँ, सेल्फ कंट्रोल नहीं है शायद।
3: विल पावर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, दोनों जरूरी है। ये समझ लेना कि सही क्या है गलत क्या है, ये बुद्धि का काम है।
2: जी,
3: वो आप बुद्धिशाली है, हैं आप, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं, आप डिसाइड कर पाते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है।
2: तो क्या करें सेल्फ कंट्रोल के लिए?
3: जैसे वहाँ पर अगर बॉडी को आपको अगर शक्तिशाली बनाना है तो हेल्दी फूड भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए।
2: जी,
3: दोनों चाहिए ना, हेल्दी फूड भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर विजडम भी चाहिए और इनर पावर भी चाहिए। तो एक्सरसाइज से फिजिकल पावर बढ़ती है, मेडिटेशन से इनर पावर बढ़ती है। अगर आपको समझ है राइट रॉन्ग की और आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू करें, जिससे इनर पावर बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी। आप मन के मालिक बनेंगे। अभी आपकी बुद्धि स्ट्रांग है लेकिन मन के मालिक नहीं है, मन के गुलाम है। मन ने कहा ये खा लो तो खा लिया।
2: सही बात।
3: मन ने कहा ये बोलो तो बोल लिया, पी लो तो पी लिया, कर लो तो कर लिया। तो मन कमजोर है। तो मेडिटेशन के प्रैक्टिस से अपने मन को शक्तिशाली बनाएं कि बुद्धि जब कुछ कहती है तो वो मन उसकी बात माने। मन बच्चे की तरह है, तो बुद्धि जब उस बच्चे को कुछ कह रही है तो मन को उसकी बात माननी चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हाय, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर चाय थोड़ी सी ज्यादा गर्म होती है, गॉसिप थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्पी होता है और प्लेलिस्ट एकदम शेफ्स किस की तरह होती है। अब ये ब्रेकफास्ट टाइप की बातें शुरू इसलिए हो गई है क्योंकि ये शो जो है वो ब्रेकफास्ट शो है और गर्मा गर्म सर्व किया जाता है यहाँ पर तुम्हें गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। ऑफ कोर्स आगे लाइंड अप है तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स, लेकिन बीच बीच में मैं भी आती रहूंगी, तुम्हें बताती रहूंगी अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, थोड़ी सी बॉलीवुड की गॉसिप्स तुम्हें देने वाली हूँ और साथ साथ में तुमसे यहाँ वहां की बातें करने वाली हूँ, थोड़ा सा बैक होम नॉस्टैल्जिया तुम्हें देने वाली हूँ एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी बकबक भी करने वाली हूँ तुम्हारे साथ में। सो अपना सीट बेल्ट लगा लो, कॉफी पकड़ लो, चाय उठा लो और अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर चिपक के बैठ जाओ मेरे साथ, क्योंकि शुरू हो चुकी है ये जर्नी जिसे हम कहते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग टू यू, वेकी वेकी। अभी चला दे तुम्हारे लिए मिर्ची दार बैंगर्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो विपिन,
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तू इतनी धीरे के बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से, और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके ओके,
3: आई लव यू,
2: आई लव यू टू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
9: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
10: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
9: What? Italmode Furniture in Paramus? Ajee sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं आज का दिन नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर ऑफ दिन है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब सबसे पहले पता करते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। सबसे पहले 1863 में शुरू हुई बैटल ऑफ गेटिसबर्ग, अमेरिका के सिविल वॉर का एक टर्निंग पॉइंट। फिर 1867 में कनाडा ऑफिशियली बना अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन। आज वहाँ कनाडा डे सेलिब्रेट होता है। तो अगर आज तुम्हारे कनेडियन दोस्त थोड़े से एक्स्ट्रा पोलाइट लग रहे हैं, डोंट यू वरी, दे आर जस्ट बीइंग कनेडियंस। 1898 में थियोडोर रूजवेल्ट के रफ राइडर्स ने सैन हुआन हिल्स चार्ज किया, और नाम सुन के लगता है जैसे कोई बाइकर गैंग हो, लेकिन हिस्ट्री हैड डिफरेंट प्लान्स। 1916 में शुरू हुई थी बैटल ऑफ द सोम, वर्ल्ड वॉर वन की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग बैटल्स। 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेंडन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने दुनिया को दिए दो फाइनेंशियल जायंट्स, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। और 1997 में हांगकांग ब्रिटिश रूल से ऑफिशियली चाइना को हैंड ओवर हुआ अंडर द आइडिया ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स। और इंडिया में आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। द इनक्रेडिबल डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिनका बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों आज ही के दिन है। तो अगर आज किसी डॉक्टर को मिलके उसे थैंक यू बोल के जादू की झप्पी दे सको तो जरूर देना। और क्योंकि लाइफ सिर्फ सीरियस नहीं होती, आज इंटरनेशनल जोक डे भी है, इसलिए ऑफिस में अगर बॉस बोले कैन यू वर्क लेट, बस होप करना कि वो जोक कर रहे हो। और साथ साथ में आज है अमेरिकन जू डे, इंटरनेशनल रेगे डे एंड क्रिएटिव आइसक्रीम फ्लेवर्स डे। टेल मी द वियर्डेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर दैट यू हैड। फॉर मी इट्स टूथपेस्ट आइसक्रीम। फटाफट से मुझे डीएम करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची फ्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोबे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
7: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search istunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Iselin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर बॉलीवुड की चाय हमेशा गर्मा गर्म सर्व की जाती है। तो आज की टी है एक्टर युद्धवीर अहलावत के बारे में, जिनको अभी रिसेंटली तुमने फिल्म कर्तव्य में देखा होगा, सैफ अली खान की लेटेस्ट मूवी जो नेटफ्लिक्स पर है। उसमें युद्धवीर ने मूवी में एक 16 ईयर ओल्ड टीनेजर हरपाल का कैरेक्टर प्ले किया है। इनफैक्ट इन सम वेज इज ऑल्सो द सेंट्रल कैरेक्टर इन द मूवी। उन्हीं की वजह से बहुत सारी चीजें होती है मूवी में। एंड विदाउट गिविंग एनी spoilers, I just want to say he is also one of the best actors in the movie. लेकिन उनके बारे में चौंका देने वाली एक बात पता चली है, जिसकी वजह से the internet is going gaga over him. In the movie, he is playing a 16-year-old kid's character. लेकिन actually में उनकी age है 33 years old. और उनके फोटोज देखकर उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। सबसे मजेदार पार्ट ये है कि सेट पर भी सब उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। बाद में जब डायरेक्टर ने सबको बताया कि गाइस रिलैक्स, ही इज एक्चुअली 33, तब जाकर सैफ अली खान और संजय मिश्रा उन दोनों ने उनसे प्रॉपर ग्रोन अप्स वाली कॉन्वर्सेशन शुरू की। और सैफ तो उनकी रियल एज जानकर लिटरली शॉक में पड़ गए। एंड आई स्वेयर इफ यू लुक एट हिज पिक्चर यू विल बी शॉक्ड टू। मतलब कुछ लोगों के जीन्स इतने पावर फुल होते हैं कि पासपोर्ट की एज कुछ और होती है और फेस पर कुछ और लिखा होता है। और यहाँ मैं एक ऑल नाइटर पुल करने के बाद सीधे अपनी दादी माँ लगने लगती हूँ। वैसे अगर तुम भी ऐसे लोगों में से हो जिन्हें हर जगह अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, कांग्रेचुलेशंस। फ्यूचर में यही कॉम्प्लीमेंट्स का फिक्स डिपॉजिट बनने वाला है तुम्हारे लिए। राइट नाउ चेक आउट माई सोशल्स, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब पता करते हैं वेदर का हालचाल क्या है। फिलहाल टेम्परेचर है अराउंड 73 डिग्रीज फारेनहाइट। स्काइज जो है वो मोस्टली क्लियर है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। परफेक्ट टाइप का वेदर है कसम से। और टेम्परेचर फील होगा 72 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। लेकिन ये सुनो, 9 से 10 बजे के बीच में थोड़े से क्लाउड्स आ जाने वाले हैं, उसके बाद फिर पार्टली क्लाउडी स्काइज हो जाने वाला है। तो सूरज आज फुल बॉलीवुड हीरो की एंट्री मारेगा, मतलब कभी कभी दिखाई देगा। आज के दिन हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 96 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर होने वाला है 99 डिग्रीज फारेनहाइट तक, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी तक। लेकिन ह्यूमिडिटी और सनशाइन मिलकर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वेदर डिपार्टमेंट में, और इसीलिए हमें थोड़ी सी गड़बड़ फील होने वाली है। गुड न्यूज एक मेरे पास है कि रेन का 0% चांस है। लास्ट 24 आवर्स भी ड्राई थे और अगले 24 आवर्स भी ड्राई होने वाले हैं, जस्ट लाइक माई ह्यूमर। मतलब कि आज अम्ब्रेला को घर पर रहने दो, लेकिन खुद का पानी लेकर बाहर निकलना जरूरी है, यानी कि वाटर बॉटल कैरी करना चाहिए। यू गॉट कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज आज एक एक्सट्रीम हीट वार्निंग भी है और एयर क्वालिटी अलर्ट भी इशू हुआ है। अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून में आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करना या बहुत ही लिमिटेड करना, और बाहर जाओगे तो SPF 50++++ वाला सनस्क्रीन मल कर जाना अपने मुंह पर, हाइड्रेटेड रहना, और अगर किसी को देखकर लगे कि वो मिर्चीदार हॉट हो रहा है तो उसे थोड़ा सा पानी पिला देना। तो इन शॉर्ट आज का वेदर जो है ना टिपिकल हमारी बुआओं की तरह है, सुबह सुबह प्यार से मिलेंगे लेकिन दोपहर आते आते लेक्चर दे सकते हैं। और अगर तुमको वेदर के अपडेट्स के साथ थोड़ी सी मस्ती भी चाहिए तो फटाफट से फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अब चलने वाला है मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले अमेरिका से एक बिग लीगल अपडेट आ रही है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट सॉट टू लिमिट बर्थराइट सिटीजनशिप। द कोर्ट लेफ्ट इन प्लेस अ लोअर कोर्ट डिसीजन ब्लॉकिंग द ऑर्डर, सो द पॉलिसी कैन नॉट टेक इफेक्ट व्हाइल द लीगल प्रोसेस कंटिन्यूज। एज ऑलवेज लीगल मैटर्स लाइक दिस कैन कंटिन्यू थ्रू द कोर्ट्स, सो वील कीप एन आई ऑन हाउ द स्टोरी डिवेलप्स। नंबर टू पर अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, इट कैरिड आउट स्ट्राइक्स targeting ISIS positions in parts of Pakistan, claiming those locations were being used to plan attacks. The situation comes after recent cross-border tensions, making it another reminder that regional security issues remain serious and closely watched. And finally, for football fans, Norway scripted history with their first ever FIFA World Cup knockout victory, beating Cote d'Ivoire 2-1. Antonio Nusa scored first, Amad Diallo leveled it, and Erling Haaland sealed the win. And next stop for Norway, a blockbuster clash against Brazil. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein Insta aur X par. Mera naam hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló, भाई? ¿Wrong number से बात कर रहा है? ¿Wrong number से?
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, wrong number से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ, मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
2: आज मैं फिर वही बात को लेकर आ गया।
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
2: वाली बात कर रहा
3: है क्या? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
11: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
16: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
17: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और पता है, चाइना में एक डेफ और म्यूट जेंटलमैन जिनका नाम है ले ज़ाचिंग, ये 35 इयर्स के बाद अपनी फैमिली से फाइनली मिल पाए। ना ही डीएनए टेस्ट हुआ है, ना ही कोई वायरल वीडियो हुआ, बल्कि एक चाइल्डहुड हैबिट की वजह से। बचपन से ले जो है वो अपना नाम उल्टा लिखते थे, यानी कि बैकवर्ड्स। और सालों के बाद एक चैट ग्रुप में उनके भाई की नजर इसी यूनिक हैबिट पर पड़ी। एक छोटी सी डिटेल और पूरा परिवार जो है वो फिर से जुड़ गया। स्टोरी यहाँ से और इमोशनल हो जाती है। 1991 में ले अपने दोस्तों के साथ चुपके से ट्रेन में चढ़ गए थे। सफर के दौरान वो सो गए थे और फिर उनकी फैमिली से बिछड़ गए थे। कौन सोच सकता है कि 35 इयर्स के बाद एक पुरानी आदत उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा देगी। कभी कभी हम सोचते ना कि हमारे छोटे छोटे क्वर्क्स जो है ये लोगों को इरिटेटिंग लगते होंगे, दे विल स्टॉप लविंग अस इफ वी कंटिन्यू डूइंग दोस थिंग्स, लेकिन यही चीजें हमें यूनिक बनाती है। अब देखो कैसे किसी के सिग्नेचर नाम लिखने के स्टाइल से उनकी पहचान उनके घर वालों को हुई। और एक बात और है कि आज घर पर ही किसी अपने को कॉल कर लेना, ये पूछ लेना खाना खाया कि नहीं खाया। कभी कभी ना एक छोटा सा केयर, एक छोटा सा कंसर्न किसी इंसान को बहुत जरूरी होता है जो उन्हें मिल नहीं पाता। और हो सकता है ऐसे मौके पर तुम अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी कजन, अपने किसी लव्ड वन के काम आ जाओ। और काम से मुझे याद है, एक काम की बात तुम्हें बतानी है मुझे। आरके जूल्स लेकर आए हैं तुम्हारे लिए रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस, यानी कि जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है। तुम पे करते हो फॉर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड डायमंड की वैल्यू। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सब कुछ तुम्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ आरके जूल्स पर। तो वीकेंड पर अगर गोल्ड या डायमंड खरीदने का प्लान है तो यहाँ जाना तो बनता है। और इसी बात पर इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRI। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये मिर्ची मॉर्निंग्स पर जुलाई 1st के बर्थडे बेबीज को विश करने का टाइम। आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम्हें एक जादू की जप्पी और साथ में पपी। और अब सुनो कि बर्थडे गैंग तुम्हारी काफी फिल्मी है। सबसे पहले डैन एक्रॉयड और साथ में बीच पे स्लो मोशन की क्वीन पैमेला एंडरसन, जिनका नाम सुनते ही 90s का फ्लैशबैक आ जाता है। एलन रक भी आज के दिन अपना बर्थडे मना रहे हैं एंड साथ साथ में लिव टायलर, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और आर्मागेडन में सबका दिल जीता था, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और जेंजी स्क्वाड के लिए स्टॉर्म रीड, जिसे तुमने यूफोरिया और द लास्ट ऑफ अस में देखा होगा। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे तो ये याद रखो कि बर्थडे के साथ सिर्फ खुशियां बढ़नी चाहिए, स्ट्रेस लेवल नहीं। मिर्ची की तरफ से तुम सबको लोड्स ऑफ लव, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ढेर सारा सक्सेस, और साथ में रिलेटिव्स का प्रेशर थोड़ा सा कम मिले। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अपने बर्थडे सेल्फीज, इनविटेशंस, शाउट आउट्स, केक्स, जो कुछ भी भेजना चाहते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड साथ साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello G, time for your gold and silver rate update on Mirch Mornings. Mera naam hai Priscilla.
2: Raj Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,320. $4,320 pat raha hai uske saath aaj subah gold ke price trade kar rahe hain. Is Father's Day ki selection pe jab 22 carat gold men's bracelet, 22 carat gold ki chain, 22 carat gold ke men's sikhi kada ya प्लैटिनम की चेन्स और प्लैटिनम के मेंस बैंड. आइए राज ज्वेल्स की खूबसूरत सी सिलेक्शन देखने के लिए, जिसमें आप आज 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी अप्रूव होने पे घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दे सकते हैं फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए. मिलके राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग.
1: And that's it for your gold and silver का latest rate update only on Mirchi Mornings. मुझसे बातें करनी है तो कनेक्ट करो. Mirchi Press is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey, good morning. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवर का 3. यहाँ पर तीन बड़ी खबरें तुमको मिलती हैं.
0: मिर्ची आवर का 3.
1: सबसे पहले टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टेडली प्लान्स अनदर राउंड ऑफ लेऑफ्स व्हिच कुड अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस सेल्स एंड कंसल्टिंग रोल्स. रिपोर्ट्स से द अनाउंसमेंट मे कम एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक. अगर तुम टेक इंडस्ट्री में हो तो बस ये याद रखो कि नेटवर्किंग फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड नंबर टू पर इलॉन मस्क इज मेकिंग हेडलाइंस अगेन आफ्टर अ पोस्ट ऑन एक्स अबाउट फेमिनिज्म चिल्ड्रन एंड हैप्पीनेस स्पार्क्ड अ ह्यूज ऑनलाइन डिबेट. सपोर्ट भी मिला है और क्रिटिसिज्म भी मिला है और सोशल मीडिया ने अपना फेवरेट हॉबी कंटिन्यू रखा है कॉमेंट सेक्शन को रेसलिंग रिंग बनाने का. एंड आखिर में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन मिलिट्री स्ट्रक रशियाज लार्जेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर इन द मॉस्को रीजन क्लेमिंग इट वॉज बींग यूज फॉर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी डेवलपमेंट्स फास्ट मूविंग है और सिचुएशन को दुनिया भर में क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है. एंड आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट. फिलहाल मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. डू फॉलो मी एट MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La viva la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
2: या ऑफ कोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मजे अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लासेस क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
2: हाँ ठीक ही कह रहे हो
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो बट मैं ध्यान रखूंगा
3: थोड़ा ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन हाँ
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
3: क्या हुआ क्या था भाभी से यार आपकी बात क्या हो गई थी
2: अरे कुछ नहीं यार
3: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखी हुई आवाज है क्या हुआ क्या था
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
3: अच्छा अच्छा
2: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
3: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
2: हाँ
3: अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
2: मजे आ रहे हैं
3: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
2: अरे तो मजा आ रहा है यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं मुर्गा बना रहा था आपके
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 7323578200 जय गुरुदेव
9: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना
10: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49 ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है
18: एक ही होता है

0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला और वेलकम टू राशि जोन पार्ट 1 ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
3: मिर्ची राशि जोन।
2: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, अगर किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया है, रिएक्शन तो बनता है लेकिन फुल बॉलीवुड रिवेंज सीक्वल की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लासी रहो। लकी कलर इज क्रिम्सन, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, गट फीलिंग सही हो सकती है लेकिन गूगल को भी खोल लो, होमवर्क के साथ साथ हंच कंबाइन करोगे तो शायद जैकपॉट मिल जाए। लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सोशल बैटरी 100% है, फ्रेंड्स फैमिली कॉलीग्स के साथ वाइब्स सेट हो जाएंगी, तो घर से बाहर निकलो, लाइफ सिर्फ ईमेल्स का नाम नहीं होता है। लकी कलर इज डार्क ब्लू, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, क्विक कैश का चांस मिल सकता है लेकिन ये याद रखो बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, हार्ट बैलेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लव का आरओआई सबसे बेस्ट होता है। लकी कलर इज पर्ल, लकी नंबर इज 6। लियो यानी कि सिंह राशि, जो चीज तुमको ट्रूली एक्साइट करती है उसी पे फोकस करो, आज की मेहनत फ्यूचर का स्टैंडिंग ओवेशन बन सकती है। स्पॉटलाइट तुम्हारा वेट कर रहा है। लकी कलर इज गोल्डन, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, नेगेटिव लोगों को म्यूट कर दो, लाइफ का अल्गोरिथम पॉजिटिविटी पे चलाओ और आज जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ग्रो कर पाओगे। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 22। एंड दैट्स राशि जोन पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर अभी थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी मैं, बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
3: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
2: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
3: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And I'm back with Rashi's own part द्वितीय. अब fasten your seat belts क्योंकि हम राशियों की बात करने वाले हैं.
2: Energy Rashi Zone.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि. लाइफ थोड़ी सी मैसी लग सकती है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ट्रस्ट द प्रोसेस. कभी कभी जूम आउट करके देखना भी जरूरी होता है. लकी कलर इज रोज पिंक. लकी नंबर इज 18. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. बॉस क्लाइंट या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलना हो तो चार्म को ऑन रखो. आज फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन बनने वाला है. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना इजी है. फिनिश करना इज द रियल फ्लेक्स. आज इनकम्प्लीट लिस्ट को कंप्लीट करने का दिन है. लकी कलर इज रॉयल ब्लू. लकी नंबर इज 30. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. किसी बात का सस्पेंस चल रहा है. रिलैक्स. हर सीक्रेट तुम्हारे वाईफाई पासवर्ड जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता. फोकस ऑन योर ड्रीम्स इंस्टेड. लकी कलर इज चारकोल. लकी नंबर इज 8. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि. आज तुम स्पॉटलाइट में हो. एंजॉय इट. बस ईगो को फ्रंट सीट मत दो. कॉन्फिडेंस अच्छा है. ओवर कॉन्फिडेंस यूनिवर्स को चैलेंज करता है. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 24. पाइसीज यानी मीन राशि. प्रॉब्लम्स को गोस्ट मत करो. वो सीन पे नहीं जाती है. फेस इट टुडे. आज तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा रियलिटी मैनेजेबल होगी. लकी कलर इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 5. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स और जाकर मुझे कनेक्ट भी कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: एक सीक्रेट बताओ, देसी लोग दो चीजों पर सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, सेल कब लगने वाली और किस सेलिब्रिटी की किसके साथ फोटो आई है। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूं मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड फॉर ऑल द फिल्मी पीपल आउट देयर, अभी फिलहाल मेरे रैप अप का टाइम हो चुका है, लेकिन जाने से पहले क्विक बॉलीवुड बज तुम्हें बताकर जाती हूँ। एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने हाफ ईयर फोटो डंप शेयर किए हैं और ईगल आइड फैंस ने उसमें से रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया को स्पॉट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से इनके ब्रेकअप के रूमर्स फुल स्पीड पर इंटरनेट पर चल रहे थे, स्पेशली एक वायरल रेडिट के पोस्ट के बाद। लेकिन कृति की लेटेस्ट पोस्ट देखते ही फैंस ने डिटेक्टिव कैप्स उतार दिए हैं। एक फैन ने लिखा है दैट 15th स्लाइड हिट डिफरेंट, और दूसरों ने लिखा है कि रूमर्स देख के जो टेंशन हुई थी अब वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। अब सच क्या है सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यार सोशल मीडिया पे ना सिर्फ एक पिक्चर दिखाई देता, पूरी की पूरी स्टोरी नहीं दिखाई देती है। इसीलिए थोड़ा सा चिल मोड में रहा करो, थोड़ा सा स्माइल किया करो और थोड़ा सा लेस ओवर थिंकिंग किया करो अगर किसी सेलिब्रिटी के बारे में करते हो और अपने बारे में भी करते हो तो भी चिल मोड में रहा करो। वैसे भी हम सबके फोटो डंप्स में से एक आध ऐसी पिक्चर होती है जिसे घर वाले और फ्रेंड्स और रिश्तेदार और सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, लेकिन सानू की फर्क पैंदा है, असी ते खाओ पियो ते ऐश करो में बिलीव करते हैं। अब इसी बात पर प्रिसिला की तरफ से टाटा बाय बाय, तुम बने रहो मिर्ची पर, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी। तब तक के लिए तुम मुझे जाकर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। Stay tuned and stay hot.

प्रोफेसर, वायरस ने तो हमें नंबर वन की अहमियत काफी लेट बताई थी यार, थ्री इडियट्स मूवी में, लेकिन नंबर वन की अहमियत हमें पहले ही पता लग गई थी। पहली तारीख की अहमियत हमें उस एड से ही पता लग गई थी जब गाते थे कि मीठा है खाना आज पहली तारीख।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. Now you tune in with me on Mirchi. और बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि जो पहली तारीख है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. लाइक इस एड से भी पहले मम्मा हमेशा पहली तारीख पढ़ना जब घर आती थी तो सांता क्लॉज बन के आती थी यार. उनके पास होते थे खाने पीने के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन. वो बेकरी से होती हुई आती थी तो वहां से हमारे लिए केक्स, पैटीज, चिप्स और क्या क्या नए लेकर आती थी. ऑफकोर्स और जो बिस्किट्स और नमकीन का स्टॉक करना होता था महीने भर का वो भी लेकर आया करती थी. तब से ना जब पहली तारीख आती है तो कुछ कुछ होता है जो आज मैं समझती हूँ, बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था, आज वो डबल हो गया है. बिकॉज यार बचपन की यादें जो है वो जुड़ी हुई है पहली तारीख से. और दूसरा, जब हमारी सैलरी आती है तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही होती कि यार आज तो सैलरी आने वाली है. तो बस फिर ये जो चंद लम्हों वाली खुशी है इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सैलरी जैसे आई है उससे जल्दी जाएगी, ऐसा वाला सीन है. इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए पहली तारीख सेलिब्रेट करना तो बनता है बॉस. मुझे तो आप ये बताओ, आप पहली तारीख को कुछ खास करते हो जिससे कि आपको महसूस हो या आपके घर वालों को महसूस हो कि यार आज तो पहली तारीख है. देखो मैं आज भी ना मम्मा की वो जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं फॉलो करती हूँ कि यार हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ये कहते हुए कि अरे यार आज पहली तारीख है. हाँ, कुछ ना कुछ तो बनता है ना बॉस. तो बस दिल को खुश करने के लिए ये छोटी मोटी खुशियों का ख्याल ही अच्छा है गालिब. क्या बोलते हो, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को अब 90s के गियर में डाला जाए? तो बस फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
9: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
10: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: महेश भट्ट की मूवी की एक खास बात है कि वो अक्सर अपने न्यूकमर्स को जब भी लॉन्च किया करते थे तो उनकी आवाज ओरिजिनल नहीं होती थी, वो हमेशा डब्ड होती थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड द सेम हैपेंड जब जॉन इब्राहिम ने पहली मूवी करी अपनी, एंड दैट वाज जिस्म, तो उनकी आवाज भी डब थी। इनफैक्ट बिपाशा बासु की आवाज भी डब थी। एंड सेम राहुल रॉय के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने आशिकी करी थी एंड दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, तो उनकी आवाज भी डब की गई थी। पर जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु ने इस फिल्म में पहली बार साथ में काम किया था, लेकिन उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर लाइक 8 years, बिकॉज इनकी केमिस्ट्री इतनी चल गई ऑन स्क्रीन कि ऑफ स्क्रीन भी दे बिकेम पेर, और 8 साल तक इनका रिलेशनशिप रहा था। एंड बिपाशा बसु का ये सेकंड नेगेटिव कैरेक्टर था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अजनबी ऑलरेडी कर ली थी। लेकिन इत्तेफाक तो ये है कि जहां जहां भी इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, दैट इज अजनबी एंड जिस्म, इन दोनों ही मूवीज में इनके कैरेक्टर का नाम सोनिया था। हालांकि ये फिल्म आपको पता है सबसे पहले किसको ऑफर की गई थी? अमीषा पटेल को। लेकिन अमीषा पटेल ने मना कर दिया इस रोल के लिए, बिकॉज शी थॉट कि वो एक नेगेटिव रोल नहीं प्ले कर सकती। And in fact, John Ibrahimby was the second choice for the film. First choice was Dino Moria, but since Bipasha Basu and Dino Moria ka breakup hua hi tha, so the Bhatts did not want ki sets par kuch awkwardness create ho just because the two actors, their lead actors, are exes, and bahut recently they had turned into exes. एंड हालांकि इस फिल्म का डायरेक्शन अमित सक्सेना ने दिया था, लेकिन आपको पता है ये काफी कहा जाता है और काफी माना जाता है कि महेश भट्ट ने आधी से ज्यादा फिल्म जो थी उसको गोस्ट डायरेक्ट करी थी। तो गोस्ट डायरेक्ट मतलब ये कि डायरेक्टर तो बैठा हुआ है ऑन द सेट्स, लेकिन एक अगला बंदा आता है और वो डायरेक्टर की जगह डायरेक्शन करके चला जाता है। अब भट्ट साहब ने तो पैसा लगाया था मूवी में, तो काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स रहे हैं जहां पर ही वो सो डीपली इन्वॉल्व्ड कि ही ओनली डायरेक्टेड दोस सीन्स फॉर द मूवी, सो दैट इमोशनल टोनालिटी एक दम सेट बैठे। आपको पता है ये फिल्म मैंने कितने जमाने बाद देखी है? स्कूल में जब मैं थी तब तो मैं ये फिल्म देख ही नहीं पाई थी। बैंड था यार हमारा इस फिल्म को देखना। कमिंग अप मोर ऑन जस्ट यू, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
6: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
7: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
8: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
9: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
4: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਿਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कहने को तो जिस मूवी के लिए जॉन अब्राहम बहुत नए नए थे, इनफैक्ट ही वाज अ मॉडल टर्न्ड इनटू एन एक्टर, और उनसे एक्टिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कोई ऑन द सेट्स, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि उनको उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज के लिए नहीं चुना गया है, उनकी शक्ल के लिए चुना गया है। लेकिन फिर भी देयर वर टाइम्स जब जॉन अब्राहम ने मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल किया था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड जॉन ने इस फिल्म के बारे में जब एक इंटरव्यू में डिस्कशन करते हुए ये बताया तो मैं भी चौंक गई यार, कि उन्होंने ना कई जगह अपने कैरेक्टर को इमोशनली चार्ज करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया। तो बेसिकली ही वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन जहां पर बंदा जो है ना वो इमोशनली बड़ा बैटर्ड है, बिकॉज ही हैज दिस गर्ल इन हिज लाइफ जिसके साथ वो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। इज फॉलन हेड ओवर हील्स इन लव विद दैट वुमन। एंड ट्रॉमा ये है कि वो उस बंदी को पा भी नहीं सकता है, उसके पास जा भी नहीं सकता है, लेकिन मोहब्बत उससे बहुत करता है, बिकॉज दुनिया दैट वुमन इज ऑलरेडी मैरिड। एंड यहां पर अपने आप को इमोशनली बैटर्ड दिखाने के लिए जॉन अब्राहम ने ये बात बताई थी कि उन्होंने अपनी पास्ट मेमोरीज को, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप रहा था और उनके रिलेशनशिप के जो रफ पैचेस थे उनको याद करना शुरू कर दिया। एट द स्टोरी ही सेड कि इनिशियली इट रिलेटेड टू मी ओनली, एंड इनफैक्ट एक सीन तो ऐसा था जहां पर उनको एक इमोशनल ब्रेकडाउन को इनैक्ट करना था और उन्होंने वो सीन ऐसा दिया कि भाई सीन खत्म हो गया लेकिन जॉन अब्राहम का रोना खत्म नहीं हो रहा था। और भट्ट साहब ने जॉन अब्राहम को आकर ये बात कही कि यार इस तरीके की एक्टिंग तो मैंने या तो शबाना आजमी की देखी है और आज तुम्हारी देख रहा हूँ। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई उस इंसान के लिए जिसको कि हम कहते हैं कि एक्टिंग नहीं आती है। और जॉन अब्राहम ने ये भी बोला कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको कि ये लगा था कि यार जॉन अब्राहम को ये फिल्म करनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज यू नो जॉन अब्राहम का जो इंट्रोडक्शन सीन है वो ऐसा है कि यार बंदा टूटा फूटा सा गिरता पड़ता सा नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी हीरो की एंट्री हो रही है बाइक के ऊपर, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। तो जब लोगों को ये बात पता लगी कि जॉन अब्राहम ऐसा कुछ रोल करने वाले हैं जहां पर यू नो उनके करियर की बिगनिंग ही एक ऐसे इंट्रोडक्शन से हो रही है, सो व्हाई वुड ही डू दैट टू हिमसेल्फ। एंड ही वाज एक्चुअली आस्क्ड बाय हिज फ्रेंड्स कि रियली डू यू वांट टू डू दिस फिल्म, आर यू रियली श्योर अबाउट इट, एंड जॉन अब्राहम वाज वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो इस कैरेक्टर से शुरुआत से ही बड़ा इत्तेफाक रखते थे, क्योंकि उनको लगा था कि यार ये जो कैरेक्टर का फर्स्ट हाफ है ना इट्स मोर लाइक व्हाट रियली हैपेंड इन माय लाइफ एज वेल, व्हिच मेक्स मी थिंक आखिर कौन थी वो बंदी। खैर सवाल तो सवाल ही रह जाएंगे क्योंकि वी ऑल नो कि जॉन अब्राहम की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता। बाबू मुशाय, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको वो स्कूल में जो हम 3D वाले शार्पनर्स यूज किया करते थे याद है?
2: ये है 90 की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या अजीब बात है यार, आज हमारे हाथ में भी एक चीज होती है जिसको कि हम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और उसका कंटेंट जो है वो बदलता चला जाता है, रील पे रील बदलती चली जाती है और हम उसे स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। लेकिन स्कूल के टाइम पर भी हमारे हाथ में एक ऐसी ही चीज हुआ करती थी जिसमें ऑफकोर्स रील पे रील नहीं बदला करती थी लेकिन पिक्चर पे पिक्चर जरूर बदल जाया करती थी, और वो था हमारा एक छोटू सा शार्पनर जो कि 3D शार्पनर हुआ करता था और उसमें एक पिक्चर 3 डायमेंशन में हमको नजर आया करती थी और जैसे जैसे हम उसे मूव किया करते थे वो पिक्चर चेंज होती चली जाती थी और हमें लगता था कि वाह क्या जादू है, क्या एक्साइटमेंट लेवल हुआ करता था यार इस छोटी सी चीज का। आज हम बड़ी बड़ी रील्स देखकर भी इतना ज्यादा खुश नहीं होते हैं, इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, ऐसा कोई डोपामिन के हार्मोन्स नहीं निकल के आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम उस एक शार्पनर को देखा करते थे तो हमें लगता था कि वाह दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है यार, क्या चीज बना दी है और क्या क्यूट सी चीज हुआ करती थी यार ये। मैं बड़ी एक्साइटेड रहती थी अपने उस शार्पनर को लेकर। हाँ, मैं ना ही उसे डेली स्कूल ले जाया करती थी और ना ही मैं उसे बहुत इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि क्या था ना कि डर था चोरी हो गया तो। आजकल तो सभी बच्चों के पास सब कुछ होता है, लेकिन तब इस बात की तसल्ली कर लिया करते थे कि यार एक के पास कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं है तो इट्स ओके बिकॉज दैट इज लाइफ। आजकल तो कंपटीशन ही इतना ज्यादा हो गया कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और पेरेंट्स इसको अवेलेबल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, दिस कम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट। आपको पता है मेरे पास ना ग्रीन कलर का एक शार्पनर था जिसके आगे तो एक ब्रश लगा हुआ था और पीछे एक इरेजर लगा हुआ था और बीच वाला पार्ट वॉज द शार्पनर और उस पर बनी हुई थी रेसिंग कार्स। ओए होए, 3 रेसिंग कार्स एक शार्पनर के अंदर। जैसे जैसे उसकी मैं बदलती जाऊं डायरेक्शन वैसे वैसे गाड़ियां भी बदलती जाती थी। वो अलग बात है कि बड़े होने के बाद एक गाड़ी की EMI ही चुकता हो जाए उसी में इंसान खुश हो जाएगा, 3 गाड़ियां तो दूर की बात है। बॉस, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear cousins ke ikattha hone wali raat.
2: Yaadon ko chitthi.
1: अब तुम लीप ईयर इनटू टू में आती हो, यानी कि चार चार नहीं आठ आठ सालों में, जब हम सारे कजिन्स को एक अरसे बाद मौका मिलता है इकट्ठे होकर गप्पे मारने का। देयर वाज अ टाइम जब तुम एक ही साल में दो बार आती थी, गर्मियों की छुट्टियों में फिर सर्दियों की छुट्टियों में। अब तो छुट्टियां ही नहीं आती यार, तो तुमने भी आना बंद कर दिया है। ये वो रातें हुआ करती थी जब हम पूरी रात जागा करते थे, एक दूसरे की टांग खींचना, गप्पे लड़ाना, एक ही रजाई में बैठकर मूंगफलियां खाना और गेम्स खेलना, और फिर आधी रात को जब भूख लगे ना तो दबे पैर किचन में जाना और चाय और मैगी बनाना। हाय, कुछ रातें तो ऐसी भी थी जब मैं ना अपने सबसे क्लोज और फेवरेट कजन के साथ बैठकर बातें किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल के छाले फोड़ा करते थे। रात खत्म हो जाती थी लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती थी। जाने कितने सनराइजेस देखे हमने तुम्हारी कंपनी में कजिन्स के इकट्ठा होने वाली रात। एक दूसरे के साथ बैठकर हार्ट टू हार्ट टॉक्स करी है, स्कूल की पढ़ाई, नया क्रश और टीचर्स का दिया गया ट्रॉमा डिस्कस किया करते थे हम। तब जिंदगी के बारे में चीजें डिस्कस करते करते ये तो सोचा ही नहीं कि आज जो इतनी सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। और तब ये जाना भी नहीं कि आने वाले टाइम में जो बड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लायक होंगी, तब वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा कि हम और हमारे दिल के करीब वो कजिन्स इतने दूर या मसरूफ होंगे कि जब असल में उनकी जरूरत पड़ेगी ना दिल हल्का करके बातें करने के लिए, तो ये एग्जैक्टली वही टाइम होगा जब वो हमें मिल ही नहीं पाएंगे। वक्त के पहिए में अटक कर उसी वक्त को तरसती हुई जब हमारे पास भी तुमसे मिलने का वक्त हुआ करता था, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
5: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आर जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो ये जो गाना है ना, आई फील दिस इज द एपिटमी ऑफ लव, क्योंकि इस गाने में जो बात कही गई है ना, एक्चुअली सच्चा प्यार मुझे यही लगता है, मतलब रियल केमिस्ट्री इज इन द साइलेंस, नॉट इन द कॉन्वर्सेशन। कहते हैं कि कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो, तो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। एंड दो लोगों के बीच में जब एक गहरी सी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी होती है, एक समझ होती है एक दूसरे के लिए दो लोगों के बीच में, उस टाइम पर बोलने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है उन दोनों लोगों के बीच में, कॉन्वर्सेशन की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इतनी सारी बातें जो है ना वो बिन कहे ही अगला इंसान समझ जाता है, कभी आंखों ही आंखों में, कभी सिचुएशन को समझते हुए, या फिर कभी इशारों में। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इन अ रिलेशनशिप इज कॉन्वर्सेशंस तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट वो कॉन्वर्सेशंस करते करते करते करते इंसान एक दूसरे को इतना समझने लग जाता है कि फिर वो जो साइलेंस होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है, बिकॉज दोनों को ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इस साइलेंस को शेयर कर सकते हैं, एंड दिस साइलेंस इज नॉट गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। एंड आई रियली रियली फील कि जब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है, और तब जब ये साइलेंस शेयर हो रहा होता है विच इज नॉट अनकंफर्टेबल, That is the most beautiful part of a relationship. क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? DM करके बताना ना मुझे on my Instagram handle which is Mirchi Sara. अभी के लिए यही गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। और बाकी यहाँ के अलावा मुझे तो आप ढूंढ ही सकते हैं on my Instagram handle which is again Mirchi Sara. चलो जी, आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखो and stay tuned to Mirchi, cause it's hot.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: जब भी राजकुमार साहब का जिक्र होता है, जानी लव्स अपने आप ही जहन में आ जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में जानी लव्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1968 की फिल्म वासना, जी इस नाम से भी फिल्में बनती थी, इसमें उन्होंने, सुनिए इस डायलॉग में कैसे जानी बोला।
2: और डालो जानी,
3: अपन शराब उधार बेचने का कसम खाया है, ये बोर्ड नहीं देखते आज न कल उधार।
2: ये तो वो बात हुई जानी कि आज मरो और कल जियो।
1: अच्छा, ज्यादातर ये माना जाता है कि वक्त फिल्म के किसी बहुत पॉपुलर डायलॉग में उन्होंने जानी बोला है, जबकि ऐसा नहीं था। हुआ कुछ यूं था कि श्रीदेवी ने चालबाज फिल्म के कॉमेडी सीन में उनकी मिमिक्री करते हुए वक्त फिल्म के डायलॉग को कुछ ऐसे बोला था, सुनिए।
4: जानी ये चाकू है, क्या है?
5: चाकू,
4: लग जाए तो खून निकल आता है।
1: और वाकई में वक्त फिल्म का डायलॉग क्या है, जब वो विलन के हाथ में चाकू को देखकर ये बोलते हैं,
6: ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
1: सो द ट्रूथ इज, राजकुमार साहब ने फिल्मों में ज्यादा जानी नहीं बोला है, बल्कि वो रियल लाइफ में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो जानी, उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
4: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
3: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
4: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
5: Oh, no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Jani, ye Rajkumar special show hai. Charu ke saath. Purani jeans par. Suno, sun rahe ho na. Mirchi par.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकीज़ा फिल्म कम्प्लीटली बिलोंग्स टू मीना कुमारी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये बात भी है कि राजकुमार साहब ने उस फिल्म को एक अलग तरह से ओन किया था, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले थे। जैसे कि ये एक डायलॉग जो मोहब्बत में बागी बनकर वो अपने बड़े अब्बा को बोलते हैं, सुनिए।
2: मैं भूल गया था इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है।
1: ओए होए होए होए, फिर उनका शायरी बोलने का अंदाज भी अजब गजब रहा है। इसी फिल्म में जब वो एक शेर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
3: बदल कर फकीरों का अंधे सवालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं।
1: ये हुई ना शेरों वाली बात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: यानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Inefficient,
6: very complex,
7: clumsy और
8: confusion ही confusion।
3: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR। काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब जब कोई किरदार निभाते थे तो किरदार उनमें नहीं घुसता था, वो किरदार में घुस जाते थे। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यही तो थी उनकी अलग बात। अच्छा, उनकी एक अर्ली 80s की मूवी थी बुलंदी, उसके कुछ डायलॉग सुनते हैं। एक सीन होता है जिसमें रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद डैनी उनको फेस करते हैं सड़क पे, तो उनको वो क्या बोलते हैं?
2: बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं।
1: इसी फिल्म में एक फंक्शन में वो एक शायरी भी बोलते हैं।
2: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: ऑल्सो इसी फिल्म में जब उनको मारने की धमकी दी जाती है तब वो क्या बोलते हैं, सुनिए।
2: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: कितनी बार ये शेर सुना है, लेकिन राजकुमार साहब के मुंह से सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
8: कोहली गोज़ डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज़ आउट ऑफ द ग्राउंड.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: సారేగామా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సారేగామా సారేగా సారేమా మంగారేసా సారేగామా సారేగా సారేమా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా మంగారేసా
1: जानी ये हमारा स्पेशल शो है राजकुमार स्पेशल।
2: सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राजकुमार साहब डायलॉग्स ही बढ़िया नहीं बोलते थे, शायरी भी क्या बढ़िया बोलते थे। उनके रोमांटिक रोल्स में भी डायलॉग डिलीवरी अलग ही तरह की होती थी, जैसे उनकी फिल्म हीर रांझा में। सुनिए शायरी उन्होंने कैसे बोली।
3: तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं।
2: ओए होए होए होए, सदके जाऊं। वैसे राजकुमार साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 की फिल्म रंगीली से की थी। फिर उनको पहचान मिली 1957 की मदर इंडिया फिल्म से। हालांकि उसमें उनका रोल काफी छोटा सा था, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि राजकुमार भी बड़े बन गए। राजकुमार साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1964 की फिल्म दिल एक मंदिर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए। इसी का गाना सुनते हैं जो रील्स पे काफी ट्रेंडिंग है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब को उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जिस फिल्म से पहचान मिली थी ना, वो थी 1965 की वक्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और खास तौर पे इस फिल्म में उनके और एक्टर रहमान, जो इसमें चिनॉय सेठ प्ले करते हैं, इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स थे ना, वो बहुत पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला।
2: ये काम सिर्फ राजा कर सकता है,
3: और राजा ना करे तो राजा मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ।
2: मोहब्बत और नफरत,
3: चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
1: ओए होए, ग्लास फोड़ दिया। नहीं सही में, इस सीन में जब ये डायलॉग खत्म होता है तो राजकुमार साहब के हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है जो वो टेबल पे ऐसे फोड़ देते हैं। इस फिल्म के लिए उनको अपना दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्च।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू linemtg.com.
4: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, ईसलिन.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची का
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीन्स में से एक है पाकीज़ा फिल्म का ट्रेन वाला सीन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स है वो डायलॉग जो राजकुमार साहब ने कहा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है शायद इसीलिए वो आइकॉनिक बन गया है। तो सीन कुछ यूं होता है, राजकुमार साहब का जो किरदार है वो आनन फानन में बरसात की रात में ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट की जगह किसी गलत कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वहाँ वो मीना कुमारी से मिलते हैं। एक्चुअली मिलते नहीं है क्योंकि वो तो सो रही होती है ना, और उनके चेहरे की तरफ तो वो ठीक से देखते ही नहीं है क्योंकि वो उनके खूबसूरत पाँव ही देखते रह जाते हैं। और फिर उनके पाँव में एक प्यारी सी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं। उस चिट्ठी पे क्या लिखा होता है ये सुनिए।
2: माफ कीजिएगा, आपके कंपार्टमेंट में चला आया था, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, आपका एक हम सफर।
1: ओए होए होए होए होए होए। वैसे जिसने ये फिल्म देखी है ना वो ये जानता है कि जिस तरह से राजकुमार साहब का किरदार इसमें मीना कुमारी के किरदार से प्यार करता है वैसा प्यार हर कोई चाहता है, ट्रू लव। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Jani, ye Rajkumar special show hai. चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तो फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना फिल्मी नाम रख लिया राजकुमार, जो उनको वेल सूटेड था क्योंकि राजकुमार राजा महाराजा जैसे ही वो रहते थे। और उनके कई पॉपुलर डायलॉग्स में से एक है उनकी लेट 80s की एक फिल्म सूर्या का ये डायलॉग। इस फिल्म में वो एक कलेक्टर प्ले करते हैं, सुनिए जरा।
2: हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी?
1: वैसे कलेक्टर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, इस तरह के रोल्स उनको बहुत ही नेचुरली सूट करते थे क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो बॉम्बे पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब करते थे। जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: 1970 की फिल्म ही रांझा एक सुपरहिट फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इसके हिट होने का, इसके पोएटिक डायलॉग्स। इसमें हीर का रोल प्ले करती हैं प्रिया राजवंश और रांझा का रोल प्ले करते हैं राजकुमार साहब। और राजकुमार साहब हो और डायलॉग डिलीवरी की बात ना हो, कैसे हो सकता है। चलो उनके ढेंटेड एंड डिशुम डिशुम एक्शन वाले डायलॉग्स जो होते थे वो तो एक से एक बढ़कर होते थे, लेकिन उनके ये जो रोमांटिक पोएटिक डायलॉग्स होते थे इनकी भी एक अलग ही बात है। तो हीर रांझा में एक शायरी जो वो रिसाइट करते हैं हीर के लिए, वो सुनते हैं।
2: तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास, तुझ में भोलापन भी है, शोखी भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से, तू सब पाया है आशिक की नजर पाई नहीं, जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं।
1: ओए होए होए होए होए होए, दिल किडनी जिगर सब निकाल कर ले गए सर। अज्ञानी राजकुमार साहब, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Ghana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath. On Mirchi.
4: Hello, hello. Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And it's time for the hottest pop music of the week. This is the Ghana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest gaanon mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hone wala hai. A special Ghana spotlight, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Ghana number 10. Pichle hafte se pure 5 position niche drop hoke Anoop Jain ki awaaz mein unka gaana arz kiya hai, a Coke Studio Bharat song is this week on Ghana number 10. उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है. गाने का नाम है साडी सुन. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर. इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक. अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साडी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेगा. एंजॉय.
2: नंबर 10.

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gana share karna ho, kissa, kahani, kuch bhi batana ho. @RJKanika on Instagram par aake quickly hit me up. गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेज को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

हाँ वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: कहा तो रॉन्ग नंबर है और क्या, किस तरह से बोलूंगा?
1: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
0: अरे तो, जब डर गया था तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
1: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
0: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
1: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
0: फिर वही बात को लेकर आ गया?
1: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
0: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
1: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
0: वाली बातें कर रहा
1: है क्या? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
0: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
1: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
0: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई ये रॉन्ग नंबर है यार।
1: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
0: भाई तू है कौन?
1: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
0: हाँ रॉन्ग नंबर है।
1: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
0: रॉन्ग ले रहा
1: नहीं, रॉन्ग नंबर ले, तुझसे बात नहीं, राइट नंबर ले, राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
0: अरे रॉन्ग नंबर,
1: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
0: चल जा, चल काम कर, चल जा।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
11: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
12: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: गाना इंडी टॉप 10,
17: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
18: नंबर 6।

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां रावटोर का म्यूजिक. गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ. इट्स टाइम फॉर अवर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो. इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अश्काय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

यार बाय कुमार सानू. ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात. I swear every time I used to listen to this song, मैं ना अपने आप में blush कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि stop it. And till date this song makes me feel like that. This song gave us Nimrat Kaur one of her earliest appearances and that pink top that she's wearing in the video. मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे. What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है. सो फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए. एंड इस सबको एनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, विच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस. This week on Cassette Classic, this is Tera Mera Pyar, only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

Dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट RJ करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज ये से गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन एट RJ कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ संजू राठौर इज बैक एंड हाउ दिस टाइम विद बैंगल्स पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5 यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका एंजॉय नंबर 5

0: दिलजीत दोसांझ सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Karenga ke saath, this is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Yahan par hum aane wale gaano ko discuss karte hain. Kaun naye collaborations ho rahe hain, kiska gaana hua countdown se out, ya kaun sa gaana ho sakta hai in. Gaana number 4 pe humne Diljit and Sia ka gaana suna Ranja, which is such an iconic collaboration. इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. Wo high energy, intensity wale gaane bhi ga sakti hain and bahut pyare love songs like this one. Dil na jaane na jaane dil na jaane na jaane. And ye dono iconic artist aati hain to create Nagin, which I absolutely love. Even 2019 se 2026 tak I cannot name a lot of female duo pop songs. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हियर्स मी पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स, आस्था एंड अकासा, वी नीड अ न्यू सॉन्ग फ्रॉम यू। दिस इज नागिन ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर इन अ सॉन्ग। गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक position ऊपर जम करके Dealer is this week on Gaana number 3। You're listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 3।

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार, अनटशंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप राइट फ्रॉम द टॉप। अनूप जैन का अर्ज किया है वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: नई नवेली एंट्री हर्ष नुस्सी का साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 8। एमसी स्क्वायर का लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन गाना नंबर 7। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत येट अगेन विद डीलर ऑन गाना नंबर 3।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोबर जोगी डब दबीना।
1: The top 2 songs of the week, मिट्टा रोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा composed by मिट्टा रोर this week on गाना नंबर 2। उसके बाद the numero uno song of the week, द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक, गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana, Gabana, Burga, Burga, la Virpa, la Burga, Mirchi, Burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया आहिस्ता बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है
2: भाई? जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे
3: हैं. हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा. हैव अ सेफ फ्लाइट.
2: ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: इट्स पटाक.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है. ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता.
10: की कह रहे हो?
9: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
10: की कह रहे हो?
11: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
12: और टिलो ने काला कोट एवे नहीं पाया.
9: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
13: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
14: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural

0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी। और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ। और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता। सूरज हुआ मध्यम, कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज जैसे उस सनसेट के ब्यूटीफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है? टेल मी ऑन इंस्टाट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सूरज

0: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
1: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.
6: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
7: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी, नदियां, पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफर जैसा लगता है क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज, यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ, जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज, यानी सॉफ्ट, सूदिंग, जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी, यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बन के तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे जरूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टा मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. ¡Cámbala! ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló?
2: ¿Anjee?
3: विवेक जी,
2: हाँ जी बताइए।
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।

0: ये लेते मजे सारे सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
0: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखना,
0: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
0: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस हमारी मिसेज की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ अभी
0: इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत होता। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
0: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजा आ रहा है यहाँ, तू मजे ले रहा फोन करके?
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नु हसा हसा के लोट पोट कीता।
7: की कह रहे हो?
6: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
7: की कह रहे हो?
8: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
9: पर टिलो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
6: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
16: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
17: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
5: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप, तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
4: Carrot Lane presents Everyday Real Diamonds. Now starting at just $1.49. Beautiful, versatile diamond designs crafted to shine with you every single day. Because diamonds aren't just for special occasions, they're for your everyday moments too. Celebrate this 4th of July with flat 20% off on diamond jewelry at the Carrot Lane store on Oak Tree Road. Hurry, offer valid only from July 3rd to July 5th.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों, कभी नोटिस किया है कुछ दिन ना बस लकी होते हैं। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी लकीली फ्री कॉफी अपग्रेड मिल जाती है, कभी पार्किंग एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मिल जाती है, कभी सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन मिल जाते हैं, तो कभी रात को फायरवर्क्स एकदम क्लियर नजर आते हैं, तब लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। और शायद इसीलिए हॉलीडेज हमें इतने पसंद होते हैं, क्योंकि हॉलीडेज का मजा ही तब आता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशियां मिल जाए। और अगर इस 4th of July आपकी लकी लिस्ट में एक और सरप्राइज ऐड हो जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस 4th of July के सेलिब्रेशन में आरके ज्वेल ला रहे हैं थोड़ी और एक्साइटमेंट। आपको बस विजिट करना है आरके ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी, एंड यू विल गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड गेट एक्साइटिंग ऑफर्स। और मजे की बात तो यह है कि इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोई परचेज करने की जरूरत नहीं, यू विल डायरेक्टली गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड अवेल एक्साइटिंग ऑफर्स। तो हो सकता है 4th of July आपका लकी डे हो, तो जल्दी से विजिट कीजिए आरके ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी। और मुझे जरूर बताइए कि लकी होने के बाद वो कौन सा गाना है जो आप सुनना पसंद करोगे। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि आरके ज्वेल्स जा रहे हो तो लकी तो होगे। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
5: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेशंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार, ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे, जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सिर्फ पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन्स, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस, हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहां माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूजिक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलोडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabara, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La virtua la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
3: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था, तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अबे मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा हूँ?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ,
3: रॉन्ग
4: नंबर ले, तुझसे बात नहीं, राइट नंबर ले, राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
11: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
12: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
11: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
12: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyo purani ada, bringing a global community back to its home.
11: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
13: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
14: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
17: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
19: Listener MA, back to back gana sunega.
0: Back to back gana sunega.
19: Only on 92.3 98.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नजर के शौक को ना पोइट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डेलिबरेट बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो ओम को शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना जो आपको बहुत पसंद है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते है ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: is 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हाँ, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था, और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो ये है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी, और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि ये गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और 6-पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है, और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक Rise off. वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द यानी दर्द दे डिस्को, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज्यादा ट्रेंडी साउंड, बस एक बहुत ही खूबसूरत मेलेडी। और मजे की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा। और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर जी। हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेप्पी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवानगी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो विपिन,
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है।
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पहाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके ओके,
3: आई लव यू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्रा

0: मामा।
1: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। कामन एक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड को अगर एक टाइम मशीन में बंद करो ना, तो यार धूम ताना एक ऐसा गाना होगा फ्रॉम ओम शांति ओम का हिट एल्बम, जो उसका गोल्डन बटन होगा। जी हाँ, मतलब धूम ताना एक प्योर रेट्रो सेलिब्रेशन था। श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज ने 70s के फिल्मी रोमांस को बिल्कुल फ्रेश स्पार्कल दिया था। और कंपोजर्स विशाल शेखर ने इस गाने को ना इंटेंशन ओल्ड स्कूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंपोज किया था, मतलब वॉयलेंस यूज करके, ट्रम्पेट्स, ड्रामेटिक बिल्डअप्स, और जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का दौर का जो चार्म था वो वापस आ गया हो। और मजे की बात तो ये है कि यार शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को डिजिटली क्लासिक फुटेज के साथ मर्ज किया गया था, जिसमें ना उन्हें लेजेंडरी स्टार्स के एरा में सीमलेसली फिट कर दिया गया था, जैसे कि राजेश खन्ना या जितेंद्र। और फराह खान ने पर्सनली हर फ्रेम सुपरवाइज की थी ताकि नॉस्टैल्जिया ऑथेंटिक लगे। वैसे तो यार ये गाना

टेक्निकली ब्रिलियंस था ही, बट उसी के साथ साथ काफी रिकग्नाइज्ड भी था, क्योंकि इस गाने को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, स्पेशली टू रिक्रिएट इट्स रेट्रो स्टाइल. तो दोस्तों, धूम ताना खुद एक कल्ट फेवरेट बन ही गया था फॉर इट्स इनोवेशन विजुअल ट्रिब्यूट, और इससे पहले कभी कोई एडिटिंग या कभी कोई गाना इस तरह से नहीं देखा गया था. और ये गाना उतना ब्यूटिफुल और 70s एंड 80s के फिल्मी रोमांस को भी वापस लेके आया, नॉट जस्ट साउंड वाइज बट फील वाइज एंड लुक वाइज. तो आप भी बताना कौन सा ऐसा दूसरा रेट्रो गाना है जो आपको बहुत पसंद है. टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI. और फिलहाल ये हिट एल्बम ओम शांति ओम का ये हिट गाना धूम ताना बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची. लेकिन आप भी मुझे बताना कि कौन सा वो ऐसा दूसरा हिट गाना है या हिट एल्बम है जो आपको भी बहुत पसंद है, उसके सारे गाने बजाएंगे यहाँ पर. और कहाँ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
7: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: की टाइम।
1: शाम शाम दालक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तुम हमसे नहीं रिलेशनशिप एक कॉकरोच से करना चाहते हो, हम ये बात समझ गए हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए. दिस इज एग्जैक्टली आई एम नॉट लाइंग टू यू द कॉन्वर्सेशन आई हैड विद माय एक्स टू एक्स बॉयफ्रेंड. तो इस बंदे को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि कैसी बातें कर रही है रोशी, ये तो क्या कह रही है, पी पा के आई है क्या. एंड आई वाज लाइक हम नहीं पिए हैं, तुम्हारे पीने की प्रॉब्लम की वजह से हमको लग रहा है कि तुम्हारा जो अगला रिलेशनशिप होगा एक कॉकरोच के ही साथ होगा. क्योंकि तुमने कब लास्ट झाड़ू लगाया था अपने घर में हमको बताओ. और घर भी क्या था बेचारे का, एक कमरा था जिसमें उनके हिसाब से जनाब ने झाड़ू बस चार ही तो दिन पहले लगाया था. हम बोले जो जमीन पर हम इतने दिनों से देख रहे हैं नान का टुकड़ा कोने में पड़ा है उसका क्या. तो कहने लगा कि हमने नान का टुकड़ा इसीलिए छोड़ा था, हमको लगा कि अगर कोई तुम्हारी तरह परी आए, लेकिन